0: Durantkasino.com.
1: इस रक्षाबंधन चौक टॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौक टॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
0: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांत, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
2: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
3: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
2: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
4: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
5: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं.
4: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
5: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
4: इंडिया तक.
5: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
0: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
6: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
0: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
7: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
4: Jahan har flavor kare full-on entertain. The Flavor Lounge.
7: Papri chaat से मालपुआ रबरी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट. एक्सपीरियंस पीस, म्यूजिक एंड मेडिटेशन विद अर्चना दीदी एट अ फ्री 3-day रिट्रीट इन DFW. जॉइन अस ऑन August 7th एट भारतीय निवास इन रिचर्डसन, August 8th एंड 9th मॉर्निंग एट श्री रघुनाथ टेम्पल इन प्लेनो एंड August 8th इवनिंग एट DFW हिंदू टेम्पल Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
0: Proudly supported by Roma Pithadia, Shri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
7: Register free now at meditation.funasia.net.
8: Welcome, welcome, welcome back, ladies and gentlemen. This is your host, Saumil, aur pahunch gaye hain aakhri hour of Friday night show. You tuned to Hum Tum with RJ Saumil. And in this segment, I have a few giveaways. So stay tuned right here. And like I said, jaisa maine bataya tha aapko break ke jaane se pehle, Friday night hai yaar, thoda party ka mood to banta hai ya nahi, right? Mohammed sahab ki request pe leke chalta hoon aapko ek blast from the past, yesteryear's track, picturized on Mithun.

Yeah, Dance Dance title track taken from of course जैसे मैंने बताया title track बता दिया फिर movie का नाम बताने की क्या जरूरत है movie का नाम और गाने का नाम एक ही है Dance Dance this was Mithun Chakraborty and a very unlikely pairing in fact इसमें आपको दिखी थी Mandakini with Mithun Chakraborty and इसमें आवाज विजय बेनेडिक्ट और अलीशा शनाय की चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की और ऐसे ही बीट को बरकरार रखते हुए लेके चलता हूँ आपको

जी हाँ, वारी जावा एंड बम बम का मैशअप था ये। इनफैक्ट मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मैं कर रहा था शो और रात थी, उस रात वो रात थी शिवरात्रि की रात। तो मैं तो यार शिवरात्रि के जश्न मना रहा था, मैं बम बम भोले के सभी गाने बजा रहा था और शिव या फिर जो भी है, ओम है शिव है जैसे। तो मैंने बोला कि आज की रात का शो का थीम जो सेगमेंट कर रहा था उसमें शिवरात्रि का थीम होगा। तो मुझे एक बहुत ही अनोखा सा कॉल, ऑफ कोर्स पीपल कॉल्ड एंड रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स रिलेटेड टू दैट थीम, बट देन एक कॉल आया, उन्होंने बोला शिवरात्रि राइट, आई सेड यस, बम बम भोले, बम बम भोले, एंड देन शी सेड कैन आई रिक्वेस्ट अ सॉन्ग ऑन दैट थीम, आई सेड जरूर रिक्वेस्ट कर सकते हो, एंड देन शी रिक्वेस्टेड अ सॉन्ग कॉल्ड बम डिगी, आई सेड नो नो नो, डिफरेंट थीम, टोटली डिफरेंट थीम, बट सो व्हेनेवर आई लिसन टू दैट सॉन्ग इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट इंसिडेंट। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर, और आपको बताता हूँ हाउ यू कैन गेट अ चांस टू विन फ्रॉम फन पिज़्ज़ा किचन। इफ यू क्रेविंग समथिंग चीज़ी एंड अगर आपको कुछ चीज़ी कुछ देसी ट्विस्ट के साथ चाहिए होगा तो फन पिज़्ज़ा किचन इज़ वेयर फ्लेवर मीट्स द फायर। अगर आप वेजी लवर हो तो आपको मिलेगा अचारी पनीर पिज़्ज़ा, इटालियन का पिज़्ज़ा और देश का अचार, माय गुडनेस, विद टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन द स्पाइसी मैजिक। अगर आप मीट लवर हो तो आपको ट्राई करना चाहिए तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा, विच इज़ प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम तंदूर टू योर टेस्ट बड्स। सो वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, देयर इज अ स्लाइस दैट इज वेटिंग फॉर यू एट फन पिज़्ज़ा किचन। फॉर डिटेल्स यू कैन विजिट देयर वेबसाइट funpizzakitchen.com एंड यू गेट अ चांस टू विन $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज़्ज़ा किचन बाई आंसरिंग ए सिंपल क्वेश्चन। जो अगला गाना बजा रहा हूँ, मुझे आप उस गाना किस मूवी से मैंने लिया है वो आपको बताना है। 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर। आई नीड द नेम ऑफ द मूवी।

जी हाँ, दैट वॉज कंग्रेचुलेशन सौरभ ऑन विनिंग दैट गिव अवे फ्रॉम फन पिज्जा किचन हाउसफुल 4. इतनी सारी किश्तें आ गई हाउसफुल की, एंड 3, 4, 5 में लोग कंफ्यूज हो गए थोड़े बहुत. कयामत वॉज फ्रॉम हाई, कयामत वॉज फ्रॉम हाउसफुल 5. दिस सॉन्ग इज फ्रॉम हाउसफुल 4. जी हाँ, क्या धूम मचाई थी कोविड के टाइम पे. आई रिमेंबर पीपल हैड दिस बाला चैलेंज गोइंग ऑन, एंड क्या धूम मचाई थी लोगों ने, मजा आ गया था. एंड थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग दिस ब्यूटीफुल ट्रैक सोहेल वन मोर टाइम. एंड चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर. देयर इज अनदर गिव अवे इन द नेक्स्ट सेगमेंट, सो स्टे ट्यून्ड राइट हियर. यू ट्यून्ड इनटू हम तुम विद आरजे सोमिल.

जी हाँ, टेकन फ्रॉम द मूवी पठान, द कमबैक एरा ऑफ शाहरुख खान. स्टार्टेड विथ पठान एंड देन केम जवान एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर किंग, वेर ही इज फीचरिंग अगेन. ही इज पिक्चराइज्ड, ही इज एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग हिज डॉटर अगेन. हिज डॉटर केम इन अनदर मूवी कॉल्ड आर्चीज, बट ही इज रीलॉन्चिंग हिज डॉटर इन द मूवी किंग अलॉन्ग विथ दीपिका पदुकोण. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर, और ये गाना लेके चलेगा हमको ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के उस पार में मिलूंगा और एक गिव अवे है आपके लिए फ्रॉम इंडिया बाजार ऑफ फोर्ट वर्थ. सो स्टे ट्यून राइट हियर, यू ट्यून इन टू हम तुम विद आर जे सोमिल. यू टिपिकली हियर मी ऑन सैटरडे नाइट वेयर आई डू द सिग्नेचर शो जीरे जरा फ्रॉम 6 to 9. सो कल रात बहुत ही धूम मचाएंगे, और लेके चलता हूँ आपको इस गाने की ओर. ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, यस्टरडेज, लव द बीट, लव द सॉन्ग, पे अटेंशन टू द लिरिक्स, एंड मिलता हूँ मैं आपको ब्रेक के उस पार.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: जीनी हुकम मेरे अका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
2: मिराज लाउंज चलिए मेरे अका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
1: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
2: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
1: और एंटरटेनमेंट,
2: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
1: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
2: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
2: Excuse me. It's called being loyal.
1: It's called being predictable.
2: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
1: And what's so special at Neon Cactus?
2: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
1: Not bad.
2: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
1: Okay, this I didn't expect from you.
2: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
3: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
4: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
7: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
13: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
14: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
13: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

feel it? Then let's go for it.

हाँ तुमसे प्यार है, वेल व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. थैंक यू अमिता फॉर रिक्वेस्टिंग दैट ट्रैक बिफोर द ब्रेक. उनको सुना था कोई ओरिजिनल सॉन्ग्स विदाउट द रीमिक्स वर्जन, एंड आई सेड यार फ्राइडे नाइट है, ये गाना तो बनता ही है. एंड दिस इज ऑफ कोर्स टेकन फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार है. ऋतिक रोशन, अमीषा पटेल लॉन्च्ड देयर करियर्स एंड द रेस्ट एज दे से इज बॉलीवुड हिस्ट्री, बॉलीवुड एंड ग्रीक हिस्ट्री, राइट. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर. और आखिरी आखिरी सेगमेंट है आज शाम का मेरे साथ, और इस गाने से आपको मिल सकता है एक इनाम. वेल यू गेट अ चांस टू विन इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ गिव अवे. यू गेट अ चांस टू विन द स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फॉर इंडिया बाजार एट द फोर्ट वर्थ लोकेशन. जी हाँ, दिस इज फॉर द फोर्ट वर्थ लोकेशन. मेक श्योर यू हैवंट वन इट इन द लास्ट 30 days, एंड इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द गिव अवे टू नाइट, मेक श्योर दैट यू आर एबल टू गो एंड पिकअप द ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ. योर वन शॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स एंड ऑल योर डेली देसी एसेंशियल्स. इंडिया बाजार इज लोकेटेड इन फोर्ट वर्थ एट 5152 Quadrant Way in Fort Worth. And this is very conveniently located for people living in Fort Worth, Keller, Hurst and Haslett. So, आपको बताना है अगला गाना जो बजा रहा हूँ मैं, इसमें सलमान खान का जो कैरेक्टर निभाया था, सलमान ने जो कैरेक्टर निभाया था, उस कैरेक्टर का नाम क्या है मुझे बताना है. डोंट कॉल मी एंड से सलमान खान है इस गाने में. यस, बट इनका कैरेक्टर वाला नाम क्या है मुझे आप बताना है. 9702355555 है स्टूडियो का नंबर. और मोहम्मद भाई, आपकी रिक्वेस्ट पे लेके आ रहा हूँ. सो ऑफ कोर्स दिस इज योर रिक्वेस्ट, यू डोंट क्वालिफाई ऑन पार्टिसिपेटिंग इन दिस गिव अवे, बट एनीबडी एल्स हु हैजंट वन इन द लास्ट 30 days, अगर आपने पिछले 30 दिनों में जीता नहीं हो, नहीं है कुछ भी इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ की ओर से, आ रहा है आपके लिए ये ग्रोसरी हैम्पर गिव अवे. आपको बताना है मुझे किरदार का नाम, सलमान खान ने जो किरदार किया था उसका नाम बताना है आपको.

जी हाँ, जुम्मे की रात है। जुम्मे की तो बात पता नहीं की नहीं थी, बट मैंने गिव अवे की बात जरूर की थी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अंकुर शर्मा फॉर विनिंग द गिव अवे फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सेकेंड, बहुत सारे सही आंसर, और सही जवाब था देवी लाल। इनफैक्ट हिज सिग्नेचर मूव, दिस वॉज सपोज टू बी ए मिस्ट्री मूवी, एंड सिग्नेचर आफ्टर एवरी इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट दैट ही डज वॉज डेविल। एंड सारी पुलिस परेशान है कि यार डेविल कौन है, इसका नाम है देवी लाल। अभी कितना स्पेल आउट करके बताएंगे आपको यार, डेविल देवी लाल। एनीवेज, नेवरथलेस, कंग्रेचुलेशंस अंकुर ऑन विनिंग द ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।

जी हाँ, उम्मीद करता हूँ आपकी ज़िंदगी में बाकी सब फर्स्ट क्लास होगा। एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग प्लेइंग अलोंग। आई हैव स्टॉप टेकिंग द रिक्वेस्ट बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं और मेरे पास सिर्फ बचे हैं 9 मिनट। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बाकी सब फर्स्ट क्लास है। और इफ़ आई कैन मेक अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू गाइज, टू द रेस्टोरेंट ऑफ फनेशिया, आई नीड प्रेयर्स फॉर माई डैड एंड ही इज़ गोइंग थ्रू सम मेडिकल चैलेंजेस एंड द प्रोग्नोसिस इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड। एंड इफ़ यू कैन कीप माई डैड इन योर प्रेयर्स, हिज नेम इज़ डॉक्टर कांति भाई पटेल। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बाकी सब फर्स्ट क्लास तो होगा। और अगर आप इफ़ यू कैन एक्सटेंड, वी आर जस्ट प्रेइंग फॉर अ पीसफुल एंड ग्रेसफुल एग्जिट फॉर माई डैड। एंड ही इज़ 90 years old एंड आई एम गोना बी जॉइनिंग हिम सून इन अ फ्यू डेज। सो इफ़ यू कैन कीप हिम एंड आवर फैमिली इन योर थाट्स एंड प्रेयर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपकी यहाँ बाकी सब फर्स्ट क्लास है।

जी हाँ भाई, तेरा स्टार है से लिया था हमने ये रिमिक्स वाला गाना, और बहुत ही खूबसूरत गाना। इनफैक्ट जो गुलाम में ओरिजिनल वर्जन था आमिर खान एंड रानी मुखर्जी का सॉन्ग, एंड दे पुट ए नाइस बीट टू इट, एंड बहुत मज़ा आया गाना देख के। राघव और निहारिका को देखा था आपने इस गाने में, रिमिक्स गाने में, जिसको लिया गया है, मूवी का नाम है भाई तेरा स्टार है। और चलिए आखिरी दो गाने सुनाते चलता हूँ चलते चलते। और क्या बताऊँ यार, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं तो कहीं है धूप जिंदगी, बस हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Hocho.
9: Hoko.
8: Hocho.
9: Hoko.
8: Hocho.
9: It's Hoko.
10: Arre bas bhi karo yaar.
9: Arre नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
10: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
11: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
12: ये तारा वो तारा हर तारा.
11: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
13: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
14: Calculating route. Rerouting.
13: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
14: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
13: क्यों?
14: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
13: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
15: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
14: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
16: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम एक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, एआई एंड लेट स्टेज प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
17: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
18: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
19: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas.
10: 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
18: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
10: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
8: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
3: सच में सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
18: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.

हेलो एंड वेलकम दोस्तों, यारो मैं हूँ पारो। आज आप लोगों के साथ जुड़ूंगी मैं फ्राइडे को 10 बजे तक, यानी कि 10 बजे तक रहेगी पारो आप लोगों के साथ और चलेंगे आप लोगों की पसंद के गाने जैसे चलाती है पारो। और फ्राइडे इवनिंग है, यानी कि कुछ मस्त होना चाहिए। कैन बी एनी वर एनी सॉन्ग आफ्टर 90s, इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड दैट इज नॉट सो स्लो, इट कैन बी मीनिंगफुल, इट कैन बी रोमांटिक, इट कैन बी फास्ट पेस्ड, इट रियली फिट्स द मूड ऑफ फ्राइडे इवनिंग। और मैं सोच रही थी कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। इनफैक्ट अभी आई वॉज कमिंग, इट इज स्टिल क्लोज टू 100 degrees, मतलब शाम को भी इतना ज्यादा गर्म रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जल रहे हैं। एंड देन आई वॉज थिंकिंग ऑफ अ सॉन्ग। फनिशर रेडियो, यू आर ऑन एयर। कट गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ काटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बैठे हैं। तो आप फिर से कॉल कर सकते हैं, 9723555555 है स्टूडियो का नंबर। पारो इन द हाउस, जल रहे हैं हम लेकिन धीरे धीरे प्यार से, डैलस की गर्मी से।

0: एमएम करीम साहब का है ये म्यूजिक का. फनीशा रेडियो यू आर ऑन ईयर. हेलो फनीशा रेडियो यू आर ऑन ईयर.
1: हेलो पाओ,
0: कैसी हैं आप अमिता जी?
1: वेलकम वेलकम टू फन एशिया.
0: थैंक यू सो मच.
1: मेक द इवनिंग वंडरफुल.
0: ओह थैंक यू सो मच.
1: आई जस्ट टॉक टू यू. आई रियली अप्रिशिएट.
0: थैंक यू सो मच.
1: योर चॉइस आई लव एंड your comments, everything. I just love you.
0: Thank you. And I love when you call and आप जब इतनी अच्छी प्यारी बातें करती हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. आप तो हमेशा ही प्यारी बातें करती हैं वैसे. Thank you.
1: Well, there's nothing to take it with us when we take off. Why can't we take nice talk?
0: Uh-huh, why can't?
1: That's what my thing, my goal is that we always talk nicely, you know, very to true. People. And
0: very true.
1: It's such a nice feeling for yourself and the other person too.
0: बिल्कुल. जितना आप अच्छा दूसरे को देंगे उतना वापस मिलेगा. दैट इज व्हाट आई बिलीव.
1: यस गेन गेन
0: या
1: विनिंग गेन गेन.
0: बहुत अच्छा.
1: आई रियली हार्टली आई अप्रिशिएट यू.
0: थैंक यू.
1: आई कॉल थिरन टू आई मीट यू टू आई मीन दोस
0: वंडरफुल आरजेस. यस
1: वेरी मच.
0: हमारे फनीशा में बहुत सारे हीरे हैं और सबसे सबसे ज्यादा अच्छे हीरे हमारे हमारे लिसनर्स हैं आप जैसे जो कॉल करते हैं.
1: आई रियली लव इट वेरी मच.
0: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.
0: थैंक यू.
1: आई एम वेटिंग फॉर ऑल द गुड सोल टाइम.
0: थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बाय. जी हाँ अमिता जी ने ये सही कहा. ये मेरा शो का टाइम नहीं है. आई एम कवरिंग एक्चुअली राइट नाउ. लेकिन जल्दी ही आप लोगों के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पे मुलाकात होगी. फिलहाल मैं आप लोगों से मिलती रहती हूँ फनीशा पे. बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ शो करती हूँ. बट यस वर हैविंग सम रियली रियली ग्रेट आरजेज एंड सम वंडरफुल न्यू आरजेज और बहुत सारे नाम अमिता जी ने लिए. मैं भी सुनती हूँ. बहुत मजा आता है मुझे फनीशा के साथ. एक बड़ी अच्छी बात है दैट इट मेक्स यू फील कि घर यहीं है, पास में है. और देखिए घर की बात करें तो घर चाहे हमारे जो देश हम छोड़कर आए हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश या फिर यहाँ यूएस में हो, लेकिन घर वहाँ होता है परिवार वालों के साथ जहाँ आप सुकून से बैठते हैं. लेकिन कई बार घर खरीदने में पैसा बहुत लगता है. एंड फॉर दैट मॉर्गेज के लिए बताना चाहती हूँ आपको. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज. योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज. सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इन टू रियलिटी with personalized mortgage solutions and a smooth, stress-free process. Yep. 50 states में there are licensed in all 50 states. Your experienced team is committed to finding the right loan options tailored to your needs. तो चाहे आप पहला घर खरीद रहे हैं या फिर आप अपग्रेड कर रहे हैं, refinancing कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं घर परचेज करने के टाइम पे, your home ownership journey starts with them. So you start with them with confidence today. Dream Home Mortgage. Call कर सकते हैं 972-245-5626 और visit dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage जैसे नाम है making dream homes happen for sure. Funisha Radio, you are on here.
2: Hanji.
1: Hello.
0: Hanji. दो आवाजें आ रही हैं. Hanji बोलिए.
1: Funisha ना?
0: Hanji Funisha बिल्कुल जी. आपने जहाँ call करा है.
1: मैंने ये आपका radio में ये सुना था. ये Mansfield करीब एक अच्छा Indian ग्रोसरी स्टोर खोला है उसका नंबर.
0: अच्छा ठीक है बिल्कुल जरूर. आप ऐसा करिए थोड़ा सा होल्ड करिए. मैं आपको ऑफर देती हूँ. लेट मी प्ले अ सॉन्ग फॉर माई लिसनर्स एंड मैं आपको देती हूँ नंबर.
1: ओके ओके कोई बात नहीं.
0: तो चलिए मैं इनसे बात करती हूँ. फिलहाल अगर कोई गाना सुनना चाहते हैं डेफिनेटली यू कैन कॉल फॉर एनी थिंग. लेकिन कोई गाना सुनना चाहते हैं तो नंबर आप जानते हैं. पारो इन द हाउस

छोटा मोटा चोर उचक्का लगता है सब। पैसे रिवॉल्वर सब छोड़ के भाग गया डर के मारे। कुछ चीज मिसिंग है साहब।

कितना अच्छा हो अगर हमारे पास ऐसी गुल्लक हो जिसको हम फोड़ के गुड लक निकालें, पैसा नहीं, चिल्लर नहीं, एकदम फुल लक. क्योंकि सच्ची बात है, आई थिंक लॉट ऑफ अस हैव रियलाइज्ड दिस. अगर नहीं किया है किसी ने तो जरूर करेंगे. मुझे लगता है मैंने ये रियलाइज कर लिया है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो बियॉन्ड आवर कंट्रोल. बहुत बार हम सोचते हैं ऐसा होगा, वैसा होगा, दिस इज वॉट वी विल डू, वेदर इट्स वर्क, करियर, फैमिली प्लान्स, वेकेशंस, एनी थिंग दैट यू प्लान. लेकिन ऊपर है कुछ एक जो चल रही है अलग तरह की प्लानिंग, व्हिच वी आर नॉट प्रिवी टू. हमें नहीं पता वो प्लानिंग कौन कर रहा है, क्या अपने आप से ही हो रही है या कुछ ऑटोमोड चल रहा है, व्हाटएवर, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली. अगर पहले से पता होगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना जिंदगी जीने में. लेकिन दैट ऑल्सो मेक्स लाइफ कॉम्प्लिकेटेड. तो बहुत सारी इश्यूज हो जाते हैं अगर आप जो सोचते हैं वो नहीं होता है. एंड इट मेक्स पॉसिबल दैट यू मे हैव अ लॉट ऑफ मनी और आपकी, लेकिन गुल्लक जो है वो पैसे से तो बहुत भरी हुई है जिंदगी की गुल्लक, लेकिन गुड लक में थोड़ी सी कम है. एंड दैट इज द क्वेश्चन कि क्या है जिंदगी में ज्यादा जरूरी, पैसा या लक. या मैं ऐड कर दूं पर्सपेक्टिव, क्योंकि कई बार पैसा भी होता है, लक भी होता है, लेकिन फिर भी लोग रोते रहते हैं. आई हैव अ फ्रेंड हु वाज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग एंड शी इज एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड इन करियर, इन लाइफ, इन फैमिली, इन मनी, एवरीथिंग, एनीथिंग दैट यू थिंक, दैट्स हाउ शी इज. एंड शी वॉज कंप्लेनिंग अबाउट हर लाइफ एंड हाउ मच वर्क एंड दिस एंड दैट. एंड आई सेड, एंड शी रोट अ पोएम अबाउट इट. उसने अपनी जिंदगी की एक छोटी सी पोएम लिखी. वो कहाँ पोएम्स लिखती है, इस तरह से लिखती है वो. तो शी रोट दैट. एंड मैंने उसे बोला कि ऐसा करो, इस पोएम में हर जगह ये लिखो दैट आई एम लकी दिस इज हैपनिंग. डोंट फॉर एवरी सेंटेंस जस्ट एड दैट एंड सी हाउ वट हैपन्स. एंड शी डिड दैट एंड शी सेड, ओ दैट जस्ट इट मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग. मेरी जिंदगी, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल एकदम 180 डिग्री टर्न हो गई. जो जो चीज़ें मुझे खराब लगती थी, परेशानी वाली लगती थी, वो सारी अच्छी लगने लगी हैं, दिखने लगी हैं. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक पर्सपेक्टिव भी इसमें ऐड कर देते हैं. और अगर पर्सपेक्टिव के साथ देखें, टाइम बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर वक्त नहीं है आपका, तो कितने भी जतन कर लें, हाथ पैर मार लें, नहीं मिलेगी आपको चाबी. लेकिन बता दी हूँ आपको, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय माई टाइम इक्विटी. जी हाँ, माई टाइम इक्विटी का टाइम हर वक्त सही है. माई टाइम इक्विटी विच इज लेड बाई CPS सुधीर पाय हेल्प्स इंडिविजुअल्स and families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities and alternative investments. So whether you're planning for long-term wealth, retirement or growing your investments, My Time Equity offers personalized solutions designed around your goals. Aap visit kar sakte hain ki website hai mytimeequity.com or you can call 469-702-1712. एक बार फिर से नंबर बता देती हूँ, 469-702-1272. टुडे आ गए हैं डैलस में, इंडिया के, मैं तो कहूंगी साउथ ईस्ट एशिया के, माइकल जैक्सन. अब देखते हैं कि कैसा होने वाला है मुकाबला. आर यू गोइंग? लेट मी टेल यू मोर अबाउट दिस आफ्टर द सॉन्ग. कौन आ रहे हैं, आ चुके हैं, लेकिन आपके सामने कौन आने वाले हैं जल्द ही.

प्रभु देवा साहब लाइव आ रही हैं. मथंगी अली एंटरटेनमेंट ग्रुप प्राउडली प्रेजेंट्स इंडियाज माइकल जैक्सन प्रभु देवा लाइव टू DFW. जॉइनिंग हिम आर लॉरेन गॉटलीब, सोनल भदूरिया, अलेक्जेंडर नोएल, हरिनी नीलाकंतन, नताशा शर्पा एंड सानवे मेघना फॉर द अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट. ये होने जा रहा है कल सैटरडे ऑगस्ट 1st एट द टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर ग्रैंड परेरी. नहीं लिए हैं अभी तक अगर आप लोगों ने टिकट्स तो बुक योर टिकट्स नाउ. कॉल 248-233-3828. मीडिया पार्टनर फनिशर नेटवर्क. बताना चाहती हूँ प्रभु देवा जी यहीं पर हैं. इन दिस इज ब्रीदिंग द सेम एयर एज वी ऑल. यहाँ की जो गर्मी है डालस की वो उनको भी परेशान कर रही है. बट व्हेन इट कम्स टू टुमारोस शो इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हॉट एंड अमेजिंग. आई थिंक डालस की गर्मी भी कुछ नहीं कर पाएगी. इट इज गोइंग टू बी सो सो ग्रेट. सो यस इफ यू वॉन्ट टू रिकिंडल द इमेजिनेशन, वो जो हमारा 90s का टाइम था उसको फिर से अगर आप जीना चाहते हैं, उन पलों को फिर से इमेजिन करना चाहते हैं जो प्रभु देवा जी के इतना जो मैजिक उन्होंने क्रिएट किया था बॉलीवुड में, साउथ में, एंड तब से करते आ रहे हैं 90s. तो मैं इससे बोल रही हूँ क्योंकि तब से आई थिंक मेरी अर्लीएस्ट मेमोरीज हैं. बट ही हैज बीन डूइंग एंड वर्किंग डांसिंग क्रिएटिंग सच अमेजिंग मेमोरीज फॉर ऑल ऑफ अस फॉर सेवरल डिकेड्स. देन वेल यू नीड टू बी देयर. इस छोटे से गाने के बाद एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद पारो लौटेगी यहीं पर. थैंक्स फॉर लिसनिंग 104.9 FM, Phoenicia Radio.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, your growth, our strategy. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
5: Shaadi biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
4: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
6: Zindagi ek rangmanch hai.
7: Aur ghar dhoondna sirf interval. Asli climax to tab hai jab closing smooth ho, paperwork clear ho aur chabi aapke haath mein ho. Parda girne se pehle First United Texas title. Hum pakka karte hain कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
4: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com।
8: भूख लगी
9: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
10: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
11: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
4: Proudly supported by Roma Pithadia, Shri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
15: Register free now at meditation.funasia.net.

0: वेलकम बैक, वेलकम बैक दोस्तों यारों, मैं हूँ पारो, रहूँगी 10 बजे तक आप लोगों के साथ. और आई एम रियली इन्जॉइंग योर कॉल्स. 972-3555-555 पर आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई गाना आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं. मेरी पसंद के गाने हैं, जैसे आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, मुझे भी बहुत पसंद है मेरी पसंद के गाने हैं. सो आई विल डेफिनेटली कीप प्लेइंग देम फॉर यू. एंड आज का दिन जो है, बहुत सारे लोगों को हैरी पॉटर, हैरी द पुत्तर बहुत सारे हम लोग जो दिल्ली या पंजाब साइड के हैं, वी कॉल हैरी पॉटर इज हरी द पुत्तर. बट दैट इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर एज यू ऑल नो. जे के रॉलिंग जी ने इस कैरेक्टर को लाइफ दी है और बहुत बच्चों को, एडल्ट्स को, बहुत लोगों को पसंद है बिकॉज ऑफ द फैंटेसी वर्ल्ड दैट शी हैज़ क्रिएटेड. और इतना ज़्यादा ऑब्वियसली फेमस हो गया है कि फिल्में और डिज्नी और बहुत बहुत सारे थीम पार्क्स में हैरी पॉटर जी हैं. एंड आई मीन उनके उनके पैराफिनेलियाज हैं, उनके उनके बहुत सारे कुछ कुछ चीज़ें हैं, गेम्स हैं और राइड्स हैं एंड वॉट नॉट. सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज टुडे, व्हिच इज एक्चुअली 31st, इज हैरी पॉटर्स बर्थडे. सो यस, हमारे इमेजिनरी कैरेक्टर को हमने रियल लाइफ से ज़्यादा अपने प्यार से और अपनी इमेजिनेशन से, क्योंकि हमारी भी इमेजिनेशन है उसमें जो हैरी पॉटर को पसंद करते हैं, और उससे हमने उसको रियल लाइफ से भी ज्यादा रियल बना दिया, ऐसा मुझे लगता है. तो वी आर सेलिब्रेटिंग हैरी पॉटर्स बर्थडे एंड ऑल दी हैरी पॉटर्स फैंस, मेरी तरफ से एक एक केक का स्लाइस आप भी खा लीजिए. डाइट पर है तो भी कोई बात नहीं, खा लीजिए. डायबिटीज है तो मत खाइएगा, शुगर फ्री खाइएगा. बट कहने का मतलब है दैट लेट्स सेलिब्रेट दैट. हमारे बॉलीवुड में हैरी पॉटर वाला तो अभी तक नहीं है, हैरी पॉटर की एग्जैक्ट फिल्म तो नहीं बनी है, बननी चाहिए, क्यों नहीं बनी है. बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्मों को ऑलमोस्ट सिमिलर कॉपी किया गया है, एंड हैरी पॉटर इंस्पायर्ड आप कह सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली हैरी पॉटर. तो मैं इंतजार कर रही हूं वो फिल्म बने तो मैं उसका गाना चलाऊं ऑन टुडेज डे इन द फ्यूचर, जुलाई 31st. लेकिन फिलहाल एक हैरी का गाना चला देते हैं. हैरी मेट सेजल. कब? जब हैरी मेट सेजल.
1: सिंगर वन.
2: रात बराती कंधा कोठे टप टप के जाना, तू सोखा समझे लगिया दौड़ निभाना.
1: तेरी बार

0: Nice. Sweet. Sister type. थोड़ा गरम गा सकती है?
1: देख, मैं बताऊँ।

टुडे इज द लास्ट डे ऑफ जुलाई और मुझे ऐसा लगता है दैट ऐसे अभी रिसेंटली ही मैं बात कर रही थी जुलाई फर्स्ट व्हेन आई वाज कवरिंग अ शो ऑन जुलाई फर्स्ट एंड आई वाज सेइंग कि देखिए अभी जुलाई शुरू हो गया है, 6 महीने गुजर गए हैं, आधा साल गुजर गया है एंड द 7th month विच इज जुलाई मंथ विच इज माई फेवरेट मंथ. सो क्यों है मेरा फेवरेट मंथ? क्योंकि मेरा जन्मदिन अभी अभी निकला है, जुलाई में आता है 9 जुलाई को. एंड आई वॉज एक्चुअली इन बैन्फ, वेरी ब्यूटिफुल कैनेडा. And so I celebrated my birthday there in the beautiful mountains of Banff, Canadian Rockies. So yes, thank you so much for the birthday wishes. I know कई सारे लोग मुझे पिछले कुछ जब मैंने पहले बात करी है विश कर चुके हैं और कई लोग मन में विश कर रहे होंगे हमारे लिसनर्स. सो मैं पहले ही आपको बोल देती हूँ थैंक यू वेरी मच. बट कहने का मतलब है दैट कैसे जल्दी पलक झपकते टाइम निकल रहा है. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज ऑल्सो द वे आर लाइव्स आर विद सोशल मीडिया एंड AI एंड वॉट नॉट. मतलब ऐसा लग रहा है कि तेजी से हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, किधर दौड़ रहे हैं कोई नहीं जानता, कौन सी है मंजिल, कहां पहुंचना है कोई नहीं जानता, लेकिन दौड़ रहे हैं. दैट इज द फीलिंग वी गेट. एंड समटाइम्स यू नो व्हाट आई डू इज आई टेक एवरीथिंग, ऑल द गैजेट्स अवे एंड आई कीप देम अवे एंड आई जस्ट मेडिटेशन कह सकते हैं आप, लेकिन प्रॉपर मेडिटेशन नहीं. आई जस्ट काइंड ऑफ लाइक क्लोज माई आईज एंड जस्ट स्पेंड सम टाइम, मे बी एक घंटा आधा घंटा, आई जस्ट फोकस ऑन ब्रीदिंग. मतलब यू कैन से दैट्स प्रॉपर मेडिटेशन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भागते भागते कई बार हम थक जाते हैं. सो आई रियली फील दैट वी शुड टेक अ स्टेप बैक एंड आई समटाइम्स लाइक टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट एंड दैट इज समथिंग आई एंजॉय अ लॉट एंड आई हाईली रेकमेंड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक थोड़ा सा रीवायरिंग हो जाती है, थोड़ी सी एक रीसेट हो जाता है आदमी. नहीं तो यू फील दैट यू नो यू आर ऑलवेज गेटिंग रिचार्ज एंड ऑलवेज ऑन द चार्ज एंड ऑलवेज ऑन द मूव. सो थोड़ा सा ये जो टाइम है, चाहे आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई फिल्म देख के कर सकते हैं, कॉन्सर्ट प्रभु देवा जी का होने वाला है कल, वो देखकर कर सकते. कहने का मतलब है देर आर मेनी वेज दैट यू कैन डू दैट रीसेटिंग. मेरे लिए होता है व्हेन आई रिफ्लेक्ट, व्हेन आई थिंक. फॉर मी दैट इज दैट हेल्प्स मी काम एंड फोकस एंड सी थिंग्स मोर क्लियरली. किसी के लिए शायरी लिखना हो सकता है, किसी के लिए गाना गाना हो सकता है. सो व्हाटएवर मेक्स यू रीसेट, व्हाटएवर मेक्स यू पॉज इन दिस वर्ल्ड इन व्हिच एवरीबॉडी सीम्स टू बी रनिंग, वेल you need to do that.

That's such a funny picturization also is gaane ka. Agar aapne nahi dekha hai, toh I would recommend. And also want to tell you, aaj ka jo din hai, which is the last day of July, kal se agla mahina shuru ho jayega. And I hope you have some interesting plans other than Prabhudeva concert. Obviously, wo toh hai hi kal. But some interesting plans for this weekend, this beautiful weekend of the first weekend of August. And this month, jo August ka month hai, uski hum baat karenge because I will be here on Tuesday evening as well. So I'll talk about that. Kyunki tab hum officially August mein padhar chuke honge. Lekin it is a very interesting month. Lot of things are opening. Jo band padi thi, chahe school ho, colleges ho, bahut sari cheeze wo ab khul jayengi. Khule hain, lekin fully khul jayenge. Ab bache school jayenge, college jayenge. It will be a different different nazara, kehte hain na, and on the roads, traffic bhar jayega. And a very interesting August, I think, is a very interesting month, at least in the US, at least in this part of the US, right? Hamare Texas mein. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं अगस्त में, होंगी, होती ही हैं हमेशा. बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं बैक टू स्कूल, बहुत सारी बिटर स्वीट मेमोरीज़ होती हैं. बच्चे कॉलेज जाते हैं पहली बार, तो माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है. सो लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स विल हैपन. बहुत सारी गुड बाइज, बहुत सारे इमोशनल टाइम इज़ गोइंग टू कम. और इस टाइम में आप एवोकाडो खाना मत भूलिएगा. एटलीस्ट आज तो एक एवोकाडो खा लीजिए. मुझे अभी याद आया, आज मैंने निकाला, लव एवोकाडो. मैं हमेशा एवोकाडो, यू नो, बहुत सारे तरीके हैं उसे बोलने के, लेकिन एक बात बड़ी सच्ची है कि ये बड़ा हेल्दी है और बड़ा मुझे अच्छा लगता है. नॉट एवरीबडी लाइक्स इट, एंड आई फील पीपल हैव वेरी स्ट्रांग फीलिंग्स, इधर दे लव एवोकाडो और दे हेट इट. मैं पहले वाले कैंप में हूं, यानी कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, और आज के दिन तो जरूर खाना चाहिए बिकॉज टुडे इज नेशनल एवोकाडो डे. मैंने कैसे मिस कर दिया अपना फेवरेट फ्रूट. कुछ लोग इसको वेजिटेबल समझते हैं, बट नहीं, ये ऑफिशियली फ्रूट है. तो आप इस फ्रूट को खाइए अगर अभी तक नहीं खाया है. आज के दिन कुछ घंटे हैं आपके पास बाकी. लास्ट मंथ इसकी बात मैंने कैसे नहीं करी, करनी चाहिए, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स एंड आई एम श्योर इट वॉज योर्स एज वेल, स्पेशली दोज हु लव क्रिकेट. जी हाँ, क्रिकेट किसको नहीं पसंद है. और क्रिकेट की फिल्म है ये जो ऑस्कर में गई थी, विच इज लगान. 25 साल जून में, यानी कि पिछले महीने, इसने खत्म कर दिए, एंड दे सेलिब्रेटेड 25 ईयर्स ऑफ लगान.

हु इज चाहे आप चाहे डॉक्टर हो नर्स हो, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम ज़्यादातर लोग पैदा ही हॉस्पिटल में होते हैं, तो पहली मुलाकात ही हम लोगों की जो है डॉक्टर से और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से होती है. तो और मुझे लगता है कि इतनी परवेजिव प्रोफेशन है, इट इज़ लाइक ऑल अराउंड अस, इट इज़ यूबिक्वस, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. और आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट एंड देन आई वॉज थिंकिंग अबाउट द फिल्म दैट हैव रिप्रेजेंटेड इट. और इसलिए मुझे लगान से कनेक्शन याद आया. ग्रेसी सिंह की एक फिल्म है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है अनिल कपूर के साथ, विच इज ऑन द लाइफ ऑफ डॉक्टर्स. इसमें अमिताभ बच्चन भी हैं. हॉस्पिटल के ऊपर है ये, एक हॉस्पिटल, मतलब वैसे तो इट्स अ लव स्टोरी बट इट इज ऑल्सो लाइक डॉक्टर्स लव लाइक हॉस्पिटल एंड ऑल दैट. सो आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट विच इज अरमान. सो लेट्स लिसन टू दैट सॉन्ग. देखिए कैसे होता है जिंदगी में, एक चीज से दूसरी चीज से कनेक्शन बनता जाता है.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया.
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया.
3: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.senadainc.com today.
6: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
7: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं.
6: What?
8: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
9: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स.
10: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर.

वेलकम बैक, वेलकम बैक दोस्तों. यारों मैं हूँ पारो. आधा हो गया है शो हमारा, आधा है बाकी. और कोई अगर गाना सुनना चाहते हैं कि टेक अ फ्यू रिक्वेस्ट फॉर दिस ब्यूटिफुल फ्राइडे इवनिंग. गर्मी है थोड़ी सी, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट है आई थिंक, बिकॉज स्पेशली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अमेजिंग शोज एंड कॉन्सर्ट्स दैट वी हैव बीन हैविंग एंड वी विल कंटिन्यू टू हैव एज वेल. प्रभु देवा जी तो कल उनका बड़ा इवेंट होने जा रहा है, एंड आई नो लॉट ऑफ यू आर गोइंग एंड यू आर शेयरिंग, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट that as well, that and bahut sari aur interesting cheeze hain jo hum baat karenge August ki when I'll be back next week on Tuesday to talk with you all. Filhal karte hain kuch jadoo ki baatein.

ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, स्पेशली ये जो एंड ये गाना होता है वो कहाँ और यहाँ, कहाँ और यहाँ, क्योंकि आई फील दैट इज़ वेरी ट्रू इन लाइफ. कई बार हम लोग बहुत ढूंढ रहे होते हैं किसी को और वही बाजू में ही होता है कोई इंसान सारी जिंदगी आप जिसको ढूंढते हैं. देर वॉज अ प्ले दैट आई वॉच्ड मेनी मेनी ईयर्स अगो, आई थिंक व्हेन आई वॉज अ लिटल गर्ल. इंडिया में हम लोग दिल्ली में बहुत प्लेस देखा करते थे, एज आई वॉज आई यूजली मेंशन एनएसटी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे प्लेस होते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के आसपास, एंड दैट्स अ थिएटर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हम दिल्ली का. तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्लेस होते हैं, क्वालिटी प्लेस, एंड रियली लॉट ऑफ लाइक स्टूडेंट एक्टर्स, लॉट ऑफ प्रोफेशनल एक्टर्स. बहुत सारे जो आप बॉलीवुड में एक्टर्स देखते हैं, नवाजुद्दीन एंड लॉट ऑफ इरफान खान एंड ऑल दोज एक्टर्स एक्चुअली केम फ्रॉम देयर. बहुत सारे वहाँ पर प्लेस करके, सतीश कौशिक, बहुत सारे प्लेस करके वहाँ पर पहुंचे हैं. और इंटरेस्टिंगली बिकॉज माई मॉम इज अ रिटायर्ड प्रोफेसर इन दिल्ली, तो वो बहुत सारे इन लोगों को उस समय जब ये स्ट्रगलिंग एक्टर्स हुआ करते थे, मनोज वाजपेयी एंड ऑल दैट, तो दे यूज टू कम टू मॉम्स कॉलेज एंड वहाँ पर दिल्ली में कॉलेज में वो छोटे छोटे कुछ सौ रुपए के लिए प्लेस करते थे. सो द पॉइंट इज दैट बहुत सारे ये स्ट्रगल कर यहाँ पहुंचे हैं, एंड देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड हार्डवर्क दैट इज नीडेड. लेकिन अगर प्ले की बात करें जो मैंने बचपन में देखा था, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो भी हमेशा मुझे याद रहती है, दैट देर इज दिस वूमन हु इज सर्चिंग फॉर द आइडियल पर्सन, और उसको मिलता ही नहीं है जो उसके दिमाग में एक आइडियल इंसान होता है, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद शी कीप्स जंपिंग एंड शी इज जस्ट लाइक मुझे नहीं मिल रहा है जो, जैसे कहते हैं ना, सोलमेट है या आइडियल पर्सन है. एंड देन टुवर्ड्स द एंड शी रियलाइजेज दैट द फर्स्ट पर्सन वॉज एक्चुअली द आइडियल, जो हमेशा साथ रहा है, दैट वॉज द पर्सन. एंड जो मुझे उसका सार याद है, जो उसका जिस्ट याद है, वो ये है कि कई बार हम जिंदगी में बोलते रहते हैं कहाँ कहाँ कहाँ, लेकिन वो होता है यहाँ यहाँ यहाँ. जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि भाई कौन है जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है या कर रही है, एंड दैट इज यहाँ, यानी कि 104.9 FM योर ओन फनीशा रेडियो. बताना चाहती हूँ आपको, दिस पार्ट ऑफ अवर शो इज ब्रॉट यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. Whether you are an individual, a startup, or an established business, AG Fintechs offers innovative financial solutions tailored to your needs. Chahe bookkeeping hai, payroll accounting hai, ya fir bank and credit card reconciliations hai, to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services. Jo bhi aapko cheeze chahiye, they keep, especially related to your finances, they take care of that. They keep your finances organized, compliant, and future ready. Ye trusted hai, efficient hai, and they are committed to your success. AG Fintechs is your partner in building a stronger financial future. Number inka jo aap call kar sakte hain wo 469-942. फिर से सुन लीजिए 469-942-9888. या फिर आप विजिट कर सकते हैं agfintechs.com. वेबसाइट जो है इनकी, दैट इज agfintechs. सो इट इज agfintechs.com. और बताना चाहती हूँ, अगर कोई नंबर या कोई वेबसाइट या कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ड्राइव कर रहे हैं, आप लोग आधा सुना, नहीं ठीक से सुना, पीछे बच्चा रो रहा है, कोई कह रहा है कि चेंज कर दो. कौन कह रहा है चेंज कर दो? बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहिए, 104.9 FM पे रखना चाहिए. बट कहने का मतलब है कि लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस पुलिंग यू इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो अगर ऐसा है आपके साथ एंड यू कुड नॉट हियर, यू कुड नॉट रजिस्टर, मैंने क्या बोला, कोई बात नहीं, पारो आपके साथ यहां पर है. 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं 972-355-5555. बहुत खुशी होगी मुझे फिर से इंफॉर्मेशन रिपीट करने में, इफ यू वॉन्ट टू लिसन टू दैट. एंड विद दैट, लेट्स लिसन टू दिस नेक्स्ट सॉन्ग.

0: वेलकम बैक दोस्तों यारो, मैं हूँ पारो, फनिशर रेडियो, यू आर ऑन एयर। हाँ जी वसीम जी, कैसे हैं?
1: गाने का क्लियर नहीं हो पा रहा।
0: आप गाना अभी तो चलाया ही नहीं है मैंने, अभी तो हम ब्रेक के बाद लौटे हैं।
1: नहीं, रेडियो में कोई आवाज ही नहीं आ रहा है।
0: अच्छा, 104.9 FM नहीं आ रहा है? ओके, लेट्स चेक।
1: जी, आवाज हो रहा है।
0: ओके, मैं चेक करती हूँ। थैंक यू सो मच वसीम जी बताने के लिए। देखिए, ऐसे हमारे लिसनर्स बहुत अच्छे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है दे फॉरन यू नो कॉल एंड लेट अस नो। बट विद दैट, रामायण जो फिल्म है उसका ट्रेलर आ गया है, बहुत सारी बातें हो रही हैं उसके अराउंड, पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, पीपल आर रिमेम्बरिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट आइटरेशंस ऑफ रामायण जो हमने थिएटर में और हमने प्लेज देखे हैं, सीरियल्स टीवी सीरीज देखे हैं या फिर फिल्में बहुत सारी बनी हैं, तो देर लॉट ऑफ दोज दैट हैव प्रिसीडेड दिस फिल्म जो आने वाली है। लेकिन एक बात बड़ी सच्ची है दैट 1980s की जो रामानंद सागर की रामायण है उसको बीट करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इनग्रेन्ड है और बहुत हम लोग उसको एक तरह से आइडियल बहुत सारे लोग मानते हैं। डजेंट मैटर व्हाट एरा यू वर, मे बी यू वर नॉट बॉर्न एट दैट टाइम, मुझे भी बहुत ज्यादा उस वक्त याद नहीं है जो मैंने देखी है, बट मैंने बाद में बहुत बार देखी है एंड इट्स वेरी गुड। सो यस, वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट दैट एंड थोड़ी सी देर में हम एक गिव अवे करेंगे कुछ इसी से रिलेटेड। थोड़ा सा करते हैं रिफ्रेश मेमोरी को 1980s की रामानंद सागर की रामायण के इस छोटे से म्यूजिक के साथ।

रामचरितमानस के ये हैं कुछ चौपाइयाँ, बट वेरी क्लोज टू आवर हिस्ट्री, और आई मीन इट इज़ आवर हिस्ट्री एंड आवर माइथोलॉजी, आवर फेथ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ह्यूमैनिटी से बहुत जुड़ी हुई है. सो यस, वी आर ऑल वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बिग फिल्म दैट्स बहुत 4,000 करोड़ से ज़्यादा इसकी इससे बनी है ये. सो इट इज़ रियली गोइंग टू बी अ मेगा एपिक एंड इन टू पार्ट्स एज वेल. सो वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म. और रणबीर कपूर पर बहुत सारी आंखें हैं, क्योंकि लोगों की, बहुत सारे लोगों पर, बट डेफिनेटली रणबीर कपूर, बिकॉज ही विल बी प्लेइंग द लॉर्ड राम. सो दैट इज समथिंग पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट. एंड विद दैट आपको बता देती हूँ, इफ यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द इवेंट्स एंड जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, लॉट ऑफ दैट यू कैन गेट ऑन अवर फेसबुक पेज एंड अवर इंस्टाग्राम फनीशा रेडियो के. अगर आप फेसबुक पेज पे जाएंगे और इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आपको बहुत सारी ये चीज़ें मिल सकती हैं. अगर आप पारो के साथ, यानी कि योर्स ट्रूली, मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो पारो कौशिक फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंसेस पारो 27 आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर. एंड विद दैट एक गिव अवे भी करते हैं, विच इज फ्रॉम सैनडली. सो नाउ दिस इज योर चांस टू विन एनी डोस ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी एट सैनडलीज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन फूड. 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स, और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग ऑप्शंस, सब कुछ यहां पर मिलता है विद जैन फ्रेंडली ऑप्शन एज वेल. विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन. तो आपको बताना है, जो रामायण फिल्म आ रही है इसी साल में, एंड विच इज यू नो गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट ऑन द यू कैन नो कॉल लाइक मेजर फिल्म दैट इज गोना बी मेड इन बॉलीवुड एंड एवर यू कुड से दैट. तो ऐसी ये जो फिल्म आ रही है इतनी बड़ी मेजर पार्ट वन, इसमें आपको मुझे ये बताना है कि रामायण की जो पार्ट वन एंड पार्ट टू, ये जो सीरीज दो फिल्मों की आने वाली है, इसके आपको मुझे कोई भी चार कैरेक्टर्स बताने हैं, चार कैरेक्टर्स विद एक्टर्स. यानी कि एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सो आपको तीन और बताने हैं. तो रणबीर कपूर इज राम, तो ये तो हमें पता ही है. आप मुझे तीन और बताइए कि कौन कौन से एक्टर्स हैं जो कौन कौन से कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. एंड द फर्स्ट पर्सन टू गिव द फर्स्ट टू पीपल टू गिव द राइट आंसर आर गोइंग टू बी विनर्स. यस, आई हैव टू गिव अवेज फ्रॉम सैन इडली व्हिच इज डोस ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी. इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा होती है वो ये है दैट यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे इन द लास्ट वन मंथ. 972-355-5555 is the number to the studio.

100 अंधेरों में भी रोशन हो, उस हकीकत की तलाश है। तेरी दहलीज पे छोड़ाए उस मोहब्बत की तलाश है। झुकने की इबादत को तो समझे जहां वालों, कटने पे जो हासिल हो उस जन्नत की तलाश है।

हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि दे कुडंट हियर द क्वेश्चन प्रॉपरली, आई होप माई वॉइस इज फाइन एंड यू आर एबल टू हियर. तो सवाल जो मैंने आप लोगों से पूछा है, इस मेरे पास दो विनर हैं और एक विनर मुझे मिल गई हैं एंड दैट इज सोनल शुक्ला. लेकिन बिकॉज सम ऑफ यू आर हैविंग इश्यू विद द लिसनिंग टू द क्वेश्चन, तो मैं फिर से बता देती हूँ दैट दिस द सवाल जो है, क्योंकि मैं एक विनर और ले सकती हूँ, एंड दैट इज फॉर सैन इडली, SANIDLY, सैन इडली रेस्टोरेंट, मिड डोस ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी. सवाल मैंने जो पूछा था वो ये है दैट जो रामायण फिल्म आ रही है इस साल में और जिसका ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है, आई एम श्योर यू नो विच फिल्म आई एम टॉकिंग अबाउट. रणबीर कपूर उसमें राम जी का रोल कर रहे हैं, तो और कौन से तीन एक्टर्स हैं जो तीन कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर्स का रोल कर रहे हैं? बहुत सारे हैं, यू कैन नेम एनीबडी, एनी थ्री एक्टर्स दैट यू नो हु आर एक्टिंग इन द रामायण दैट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड दिस ईयर. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. इफ एनीबडी हैज एनी इश्यू, नहीं अगर सुनाई दिया एनीथिंग लाइक दैट, प्लीज कॉल एंड टेल मी 972-235-5555. एक ही नंबर है हर तरह से हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए.

ये यश साहब की फिल्म है टॉक्सिक. लेकिन अभी जो ये करने जा रहे हैं रामायण में, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होने वाला है, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी द एपिटोम ऑफ ईवल, कॉम्प्लिकेटेड ईवल. क्योंकि रावण साहब का जो अवतार है, जो जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड. एज वी ऑल नो, इट्स रियली नॉट ट्रूली फुली 100% ईवल. उसमें बहुत सारी चीजें हैं एंड बहुत मुश्किल है ये किरदार निभाना. सो यश साहब इज लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग इन दिस फिल्म, इन दिस ट्रेलर आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमें ट्रेलर एक झलक ही दिखी है. एंड यस, आई गॉट अ लॉट ऑफ अदर कॉल्स, तो आई एम हैप्पी टू हियर कि आप लोग मुझे अब सुन पा रहे हैं एंड यू आर एबल टू यू नो पार्टिसिपेट इन दिस गिव अवे. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर ऑल द पार्टिसिपेशन. और प्रतीक साहब, प्रतीक एंड सोनल, मुबारक हो आपको सैनिटली की तरफ से. डोस ऑफ योर चॉइस एंड विन फिल्टर कॉफी. एंड विद दैट, लेट्स लिसन टू सम मोर सॉन्ग्स.

पिछले 2 घंटे की कहानी मैंने बहुत इंजॉय करी. आई होप यू ऑल्सो इंजॉयड इट. होगी आप लोगों से मुलाकात, पारो मिलेगी आपसे फिर से ट्यूजडे इवनिंग को. आई विल बी हेयर इन ट्यूजडे इवनिंग अगेन एंड दैट टाइम विल टॉक अबाउट अगस्त, क्योंकि जुलाई खत्म हो रहा है. अगस्त की थोड़ी सी झलक मैंने आप लोगों को दे दी, जैसे अभी रामायण फिल्म की थोड़ी सी झलक मिली है हम लोगों को, वैसे मैंने थोड़ी सी अगस्त की झलक दे दी. बट वी विल टॉक इन मोर डिटेल अबाउट दिस इंटरेस्टिंग मंथ दैट इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ फ्यू आवर्स. जी हाँ बिल्कुल, घड़ी की सुई चल रही है, वक्त ऐसे ही निकलता जाता है. पकड़ने की जरूरत नहीं है वक्त को पकड़ना. मैं ये कहती हूं, मैं ये मानती हूं कि वक्त तो अगर पकड़ते हैं हम तो वक्त तो नहीं रुकता. लेकिन आई थिंक हमें एक गलत फहमी हो जाती है, क्योंकि वक्त कभी रुकता नहीं है. तो उसे पकड़ने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए, उसे बेहतर रहने देनी चाहिए. सिर्फ हम उसके साथ एक फ्लो में चलना चाहिए एंड वी शुड एंजॉय एवरी मोमेंट, एवरी द पैसिंग ऑफ द मोमेंट. जो वक्त बीत रहा है, थोड़ी थोड़ी ये आगे आगे जर्नी बढ़ रही है, इसको एंजॉय करना चाहिए. ट्राई टू डू समथिंग दैट यू रियली लव, समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी. वो हो सकता है कि किसी दोस्त से मिलना, किसी दोस्त से बात करना, किसी के घर जाना, एक फिल्म देखना, एक गाना गाना, एक गाना गुनगुनाना, या फिर कुछ खाना बनाना, किसी को खिलाना, किसी से गले मिलना, कुछ एक कविता लिखना और फनेशिया सुनना, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग दैट ट्रूली गिव्स यू जॉय, इट मे बी जस्ट अ स्मॉल थिंग, इट मे बी अ बिग थिंग, वट एवर इट इज, डू दैट दिस वीकेंड. मेरी बात मानिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिंदगी में जो इस जर्नी को बहुत खूबसूरत बना देती हैं. एंड विद दैट, कुछ लोग बोल रहे थे दैट दे वर नॉट एबल टू हियर, सो आई डू वांट टू से टू कनेक्ट विद मी, यानी कि पारो के साथ ऑफ एयर कनेक्ट करने के लिए यू कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम विच इज प्रिंसेस पारो 27 और फेसबुक विच पारो कौशिक. इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत, आरजे पारो साइनिंग ऑफ, कीप लिसनिंग टू फनेशिया.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
3: Yaar, mere phone mein hum dono ke kitne selfies hai yaar.
4: To chal, un selfies se pizzas khate hain.
3: What?
5: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen, and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
7: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
6: सच में? सब संभाल लेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

0: Club Phonasia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: तेरी ये बारी सबकी तूने वाट लगवा दी लड़की है

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTechs, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG FinTechs led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
1: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
3: What?
4: This friendship day bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
5: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
2: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
5: Register free now at meditation.funasia.net.
6: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
4: I'm Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

0: beat like you're jumping on the pogo.
1: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
2: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
1: What?
3: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
4: So, रुको जरा, सबर करो।
5: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। Stay tuned to Funasia.
6: Celebration of music and rhythm.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
3: तो चल उन सेल्फी से पिज़्ज़ास खाते हैं।
2: What?
4: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
5: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
6: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

solution and let the good times roll.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुककीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।

बस आशिकों पे रहे

0: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
2: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: इन टुडेस बिजी वर्ल्ड, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रूली पॉज्ड एंड लिसन टू योरसेल्फ? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.
5: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: काफी हो।
1: उनसे तो लड़ ले बेटा, दुनिया से कैसे लड़ोगे?
2: आप ही दुनिया हो
0: मेरे लिए, तुम काफी हो।
3: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
4: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

दूंगा दिल तेरा, ले कहीं तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच। बोली में थोड़ा रियान भी टच है, जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
1: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

0: SBA लोन एक्सपर्ट्स
1: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
0: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
1: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

0: सर लगता है फारूक नहीं बोलेगा।
1: उसका बाप भी बोलेगा।
2: बेटा वार्निंग नहीं दूंगा।
3: 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में पड़ चुके होंगे।
4: होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है। He's a human bomb.
5: देख बेटा

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Restaurant choose karna ho? Google Reviews. Hotel book karna ho? Google Reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
8: Isliye Dr. Farhad has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
9: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
8: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली। हु आर द एम्प्लॉइज योर कंपनी सिंपली कैनॉट अफोर्ड टू लूज? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key

0: ये देखो ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत है।

0: गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं।
1: दरगाह में भी
0: मत्था टेकने से पहले हाथ मुंह धोते हैं,
1: सजदा करने से पहले भी।
0: दरगाह में कड़ा प्रसाद नहीं मिलता?
1: तबर्रुक मिलता है, मेरी इबादत तुम्हारी इबादत,
0: तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत।

बहुत ही प्यारा गीत, बोल ना हल्के हल्के, ब्यूटीफुल सॉन्ग अभिषेक और प्रीति जिंटा पर फिल्माया गया शंकर एहसान लॉय का संगीत फ्रॉम दैट गोइंग टू मूव टू दिस ब्यूटीफुल वन जो कि लगता है फिल्माया गया है ग्रीस में। आखिर की शाहरुख खान के बारे में बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ट्रैक।

0: बहुत ही प्यारा गाना लिया था जिसमें थे रानी मुखर्जी और शाहरुख खान. शाहरुख खान का नाम लेते ही इंतज़ार हो जाता है लोगों को कि भाई अब कौन से फिल्म में देखेंगे आप. बताना चाहूँगी कि टू बी रिलीज्ड ड्यूरिंग द क्रिसमस ऑफ दिस ईयर यानी कि दिसंबर 2026 इज़ द फिल्म किंग. और किंग इज़ ऑलरेडी मेकिंग अ लॉट ऑफ न्यूज़ इन द इंडस्ट्री. And right now, reports कहते हैं कि the film is eyeing a massive 50 crore rupees वाला music rights deal ahead of its release. Suhana Khan भी दिखाई देंगी इस film में. So much to look forward to. Well, Suhana Khan has her own fan following, but I know Shah Rukh Khan के जो fans हैं, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस film का. Film का नाम King.
1: Dallas की धड़कन 104.9 FM, Phoenicia Radio.
0: और फैन फॉलोइंग की बात करें तो भाई संजय दत्त हैज हिज ओन फैन फॉलोइंग एंड अलोंग विथ हिज फैंस एंड लव्ड वंस ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे जस्ट वेरी रिसेंटली अ कपल डेज अगो. आपको पता है कि संजय दत्त की उम्र क्या है आप बताएंगे मुझे 9722355555 पे.

0: the industry right now is getting ready to explode, if you ask me. I mean, these huge films are coming, and one of them is, of course, Ramayan, featuring Mr. Ranbir Kapoor. I can't wait for it. When I look at who's going to provide music, I mean, Hans Zimmer and A.R. Rahman.
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर
2: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
3: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
4: वेट इतना सब और प्राइस
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं ही तो
6: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
7: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार
8: तो चल उन सेल्फी से पिज़्ज़ास खाते हैं
7: व्हाट
9: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स
10: इस साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
11: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
10: नहीं
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है
10: नहीं
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
10: वो भी नहीं
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 AG FinTax योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी
13: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
14: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas. Cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
16: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway because miracles happen in Mirage.
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
17: Kya matlab?
18: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
18: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
17: Ab to karna hi padega, madam.
19: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
20: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
0: And welcome back to Music Mantra, दोस्तों जिसमें मैं हूँ आपके संग संगीता आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक हमारे साथ है मीठे तराने एक्चुअली इन दिस वन फास्ट एंड अपबीट सॉन्ग्स हैं इस सेगमेंट में और इस सेगमेंट के बाद एक वार्तालाप होगी हमारी कुछ बातें होंगी बट फॉर नाउ लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक फीचरिंग रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट आलिया भट्ट की कौन सी फिल्म आ रही है जो हंगामा मचा रही है इंडस्ट्री में बताइए मुझे 972-235-5555 पे

0: 눈가리라래.
1: 와, 춘가?
0: 눈가리라, 눈가리라, 눈가, 눈가, 눈가, 눈가, 기라기라기라기라래. 눈가.
1: 와, 춘가?

0: वैसे हंगामा जो फिल्म मचा रही है स्टारिंग आलिया भट्ट इज द फिल्म अल्फा, और इसमें दिखाई दे रही है शर्वरी वाघ ऑल्सो, एंड यू नो व्हाट, इट्स एन इंटरेस्टिंग टेक ऑन एन एक्शन फिल्म, स्पेशली बाय स्पाई यूनिवर्स जो इनका इंस्टॉलमेंट चल रहा है ना, ये दिस इज द सेवेंथ वन, वेरी इंटरेस्टिंग टेक, एंड इस फिल्म में दिखाई देंगे अनिल कपूर और बॉबी देओल ऑल्सो. नाउ आलिया भट्ट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन अ कपल अदर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग अ फिल्म कॉल्ड डोंट बी शाई, एंड इट्स गॉट टू हैव सम अमाउंट ऑफ कॉमेडी, एंड यू नो इट्स वेरी क्यूट टू वॉच आलिया भट्ट डू कॉमेडी इन माई माइंड एटलीस्ट, एंड इफ यू हैव समथिंग डिफरेंट टू से शेयर विथ मी. Now, another film that she started working on is a period romantic drama. और ये फिल्म बना रहे हैं संजय लीला बंसाली. तो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड में सुपर डुपर मैग्निफिशेंट सेट होंगे, बहुत ही बढ़िया गाने होंगे, पर उनके साथ होंगे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एंड विकी कौशल. और ये फिल्म रिलीज होने वाली है जनवरी ऑफ 2027 में. So much to look forward to for Alia Bhatt fans out there.
1: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
0: और कार्यक्रम का ये हिस्सा जो है हम तक ले आ रहे हैं AG FinTechs, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो चाहे आप इंडिविजुअल हैं या आपकी एक स्टार्टअप है या है एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, वेल AG FinTechs ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टेलर्ड टू योर नीड्स. नाउ दे ऑफर सर्विसेज सच एज बुककीपिंग, payroll accounting and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory services. They help keep your finances organized, compliant and future ready. Why wait then, right? You heard it all. Why wait? Call them at 469-942-9888. They are trusted, efficient and committed to your success. AG FinTechs, your partner, building a stronger financial future. You could also visit them at agfintechs.com today.
2: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop infotainment.
0: आज की ताजा जो खबरें हैं ना, उनमें से एक खबर है जो बहुत you know, I won't say it's like good news because this has to do with Rashmika Mandanna, जो हाल ही में फिल्म की शूटिंग कर रही थी, एंड शी हैड एन इंसिडेंट एंड हैज इंजर्ड हर हिप. वी विश हर ऑल द बेस्ट, एंड विद दैट नाउ अलोंग विद कृति सैनन्स नेम इज रश्मिका नेम ऑन दिस सॉन्ग, राइट, ऑल ओवर द प्लेस. फिल्म का नाम कॉकटेल 2.
3: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नाउ यू आर गेटिंग मी.
4: यू गाइस वांट टू ऑडिशन?
5: ट्रोल हो जाएंगे, मत करो.

0: Yes.
1: All right. जैसे कि मैं पहले बता रही थी आपको दैट रश्मिका मंदाना हैज सफर्ड अ मेजर हिप इंजरी ऑन द सेट एंड इसके लिए इनको थोड़ा वक्त लेना पड़ेगा. इनफैक्ट कह रहे हैं कि कम से कम 6 हफ्ते पे के लिए शी इज गोइंग टू हैव टू स्टॉप हर वर्क एंड टेक कंप्लीट रेस्ट एंड ए स्ट्रक्चर्ड रीहैब प्रोग्राम. वी सेंड अ वेरी बेस्ट विशेज टू रश्मिका. एंड ऑन दैट नोट, अगर आप हमारे शहर में हैं और आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, स्लिप हो, फॉल हो या हो कोई एक्सीडेंट, जैसे कि कार या ट्रक का एक्सीडेंट हो, तो कॉल कीजिएगा अटॉर्नी ओमर ख्वाजा को. ये आपके केस के लिए फाइट करेंगे एंड ही विल गेट यू द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी आपकी मदद करेंगे बिकॉज यू डोंट एनी मोर स्ट्रेस देन यू वुड ऑलरेडी हैव हैविंग हैड दैट एक्सीडेंट और अनफॉर्चुनेटली दैट इंसिडेंट. So you want attorney Omar Khwaja to be there so that you can also make sure, they can make sure you are compensated. For a free consultation, give them a call at 469-300-5046. Ek aur cheez yaad rakhiyega that you don't pay attorney Omar Khwaja until you win your case. If you want more information, definitely visit attorneyomar.com or give them a call at 469-300-5046. And definitely want to tell you that all the traffic updates and any accident reports that we mention here are brought to you by Omar Khwaja.
2: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
1: At this time also, I am taking requests. If you have any song on mind you want to listen to, give me a call. I know that people are getting ready to watch Mr. Prabhu Deva in concert this evening. Well, if you have a song on mind to do with that, let me know. I will be happy to get that for you as well. Filhal, ek hi gaane ki request aayi hai, and that is Ke Sara Sara. What a beautiful track to listen to, but really to watch. Watch the moves by Madhuri Dixit and, of course, none other than Mr. Prabhu Deva. आपको अगर याद हो ये गाना किस फिल्म से है तो वो भी बताएंगे आप मुझे 972-235-5555 पे. Here we go.

एंड वार्म वेलकम बैक टू म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता, आपको और मेरा साथ रहेगा 10 बजे तक। हमारे साथ है बहुत ही बेहतरीन संगीत और वार्तालाप करने के लिए टॉपिक, और टॉपिक से जुड़ा हुआ है सवाल। सवाल का आप देंगे जवाब। फोन नंबर उसके लिए है 972-235-5555। तो सवाल है कि सुबह सुबह आंखें खुलती हैं, सुबह होने से ही आपके हाथ ऑटोमेटिकली गो आउट टू रीच फॉर, फिल इन द ब्लैंक, द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एज सून एज वी वेक अप वी रीच फॉर डैश। गिव मी अ कॉल, टेल मी व्हाट दैट इज। The first thing we reach for in the morning is what?

0: तो कभी नोटिस किया है? आई एम श्योर किया है, क्योंकि आप सभी के कॉल्स कह तो रहे हैं कि नोटिस किया करते हुए आ रहे हैं कि सुबह सुबह आंख खुलते ही हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ चला जाता है, अलार्म बंद हो जाता है पर सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग होता है, और सोशल मीडिया नहीं बट कम्युनिकेशन वाली एप्स पे भी होता है, ईमेल्स चेक करते हैं, कभी हम वेदर चेक करते हैं, कभी ट्रैफिक चेक करते हैं, कभी आज की ताज़ा खबरें चेक करते हैं, बट पहले पहले पहले सुबह सुबह उठते ही द फर्स्ट थिंग वी रीच फॉर इज द फोन. एब्सोल्युटली. तो आखिर हम सुबह सुबह सबसे पहले फोन क्यों देखते हैं? एनी आइडिया? गिव मी अ कॉल, टेल मी एट 972-235-5555.
1: हेलो 9821026212 BPL. अरे 9820026235 Max Touch. यार जिस लड़की को पटाने का वही फोन पर नहीं आती यार.

हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने कॉल किया और कहा कि सुबह सुबह द फर्स्ट थिंग दे रीच फॉर इज देयर स्मार्टफोन. तो वो तो अब इस्टेब्लिश हो ही गया. तो मैंने आपसे पूछा कि आखिर हम सुबह पहले वे फोन क्यों देखते हैं. वेल, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट टू दिस. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट आवर ब्रेन्स आर वायर्ड टू लुक फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन. बहुत साल पहले ऐसा होता था कि दैट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेन्स दैट यूसेज आई गेस वाज दैट इंस्टिंक्ट दैट हेल्प्ड अस सर्वाइव. उन दिनों में लोग केव के बाहर जाकर देखते थे कोई डेंजर है कि नहीं. बट नाउ वी आर यूजिंग दैट एक्चुअली टू चेक इफ देर आर एनी मैसेजेस. हाउ इज दैट अ लिटिल बिट ऑफ अ चेंज इन व्हाट वी आर चेकिंग. बट दैट्स व्हाट इट इज that our brains are wired to look for new information.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: इस रक्षाबंधन चौक टॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौक टॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस
1: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर मस्ट बी 21 ओल्डर टू पार्टिसिपेट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई प्लीज प्ले रिस्पांसिबली
3: तारा वो तारा हर तारा
4: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
7: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
11: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
12: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
12: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
11: सच में सब संभालेंगे
12: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 Vanessa Events, your celebration partner.

And a warm welcome back to the final segment of this morning's Music Mantra, जिसमें रही हूँ मैं आपकी संग संगीता. हमारे साथ अब टॉपिक है इन दिस पार्ट ऑफ आवर शो दैट वी स्टार्टेड, और टॉपिक था कि व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग वी रीच फॉर एज सून एज वी वेक अप. अलार्म बंद करते ही वेल फोन की तरफ जाते हैं हम, सुबह सुबह खुली नहीं, और चेक करते हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है भाई, ईमेल पे क्या चल रहा है, वेदर क्या है, न्यूज़ क्या है, वगैरह वगैरह. एंड आई विल टेल यू दैट दिस इज नॉट फॉर एनी अदर रीजन बट वेल आवर ब्रेन्स आर वायर्ड टू लुक फॉर मोर और रादर फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन. एंड देखते हैं हम कि क्या हुआ था क्या हुआ था. बट इन एडिशन टू दैट इट इज ऑल्सो that we check our phones because of something called FOMO. FOMO is a fear of missing out. देखना है किसी ने कुछ मैसेज तो नहीं किया, रात में क्या हुआ था. Well, is it something that everybody else knows that I don't? और फिर ज़्यादातर तो कुछ होता है नहीं. Most of the time इस तरह होता है कि notification होती है और notification कहती है well, your phone is fully charged. Well, that is a good feeling, but that's not what you're looking for, right? It is FOMO that takes you over and over back to your phone 24/7 at any place, at any time, right? All right.

0: 24/7 हम चेक करते रहते हैं फोन फॉर अ रीजन कॉल फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट. और नोटिफिकेशन में से कुछ सरल सा ही होता है, वेल योर बैटरी इज नाउ फुली चार्ज, या कहते हैं कुछ अपडेट कीजिए फोन को. हाउ एवर दिस ऑल्सो इज हैपनिंग कि नोटिफिकेशन आया नहीं और देखना, क्योंकि एवरी नोटिफिकेशन गिव्स अ ब्रेन ए टाइनी रिवॉर्ड एंड दैट इज द डोपामाइन लूप. सो कभी कभी तो ऐसा भी होता है भाई, नोटिफिकेशन नहीं आया फिर भी हम फोन अनलॉक कर ही देते हैं, राइट?
1: 104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
0: And sometimes the brain is asking for some yummy, yummy, yummy, yummy food. And for that, I would like to tell you about Page 3 Eatery. They're located at Hub 121. Yahan par jayenge to aap payenge Indian street food meeting modern flair. Yani ki kebab honge, chaat, fusion bites, mocktails, great vibes for brunch, lunch or dinner. Perfect for foodies, for dates and flavor chasers. So, why wait? Visit page3eatery.com and get all the information you are looking for.

And now for me to tell you a little bit about Fun Pizza Kitchen. And I also want to tell you that this is a giveaway wala time. And I will have the question at the other side of this message coming from Fun Pizza Kitchen. Well, friends, celebrate Friendship Day at Fun Pizza Kitchen with great food and even better offer. तो दोस्तों को ले आइए एंड एंजॉय कीजिए इनके डिलिशियस फेवरेट्स जैसे कि टैंगी अचारी पनीर पिज्जा और द स्मोकी तंदूरी चिकन पिज्जा. उसके बाद आप आइए और सेल्फी लीजिए एंड देन पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम टैग फन पिज्जा किचन. अब ये करने पे आपको मिलेगा 10% ऑफ योर बिल और यू वुड गेट ए फ्री गार्लिक ब्रेड. नाउ दिस फ्रेंडशिप डे ऑफर इज वैलिड ओनली अंटिल August 3rd, सो डोंट मिस आउट. Make sure that this weekend you go to funpizzakitchen.com or rather to the location Fun Pizza Kitchen. Now, if you want more information before going there, visit funpizzakitchen.com. Bahut hi saral sawal hai. I'm going to take it away from the topic and ask you very simple question. Ye jo agla gana main sunwaungi aapko, aapne batana hai ye kis par filmaya gaya hai. Simple. 972-235-5555. अब अगर आपका जवाब सही है मैं आपका नाम डालूंगी इन अ लिस्ट फॉर योर चांस टू विन ए $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. ओके, बहुत ही सरल सवाल. फोन नंबर 972-235-5555. ये गाना किस पर फिल्माया गया है बताइएगा मुझे.

0: show.
1: Drink for all.
2: Конечно, сэр.
1: Ой, Виктор Сид, you're not dead.
3: एक हाथ मेरे साथ खेलेंगे अबू सर जीत गए मेरे पत्ते नहीं देखेंगे
1: I have three aces, are you blind?

Congratulations to Kamal for winning the $10 gift card to Fun Pita Kitchen. Wo jo gana tha, it was called I'll Do the Talking Tonight. It was from the film Agent Vinod aur filmaya gaya tha Saif Ali Khan pe. Well, moving forward, as I look at the clock, it's time for me to leave. But I want to tell you ki hum phone kyun dekhte hain? Na hi sirf pehli baar subah mein utne se hi, but baar baar. One of the reasons we talked about was FOMO. We talked about the dopamine loop because that is how the brain works. Wo notification aata hai aur hum phone uthate hain and the brain releases the dopamine. And think of it, smartphones aane ke pehle hum kya karte the? Well, subah subah uthkar pehle chai peete the, kuch kabhi kabhi akhbar padte the, kuch log subah uthkar प्लांट्स वाटर करते थे या पहले पहले जाकर सूरज की किरणें देखते थे और वॉक के लिए जाते थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब क्या है ना कि फोन इट इज नॉट अ बैड थिंग, ऑनेस्टली इट्स अ गुड थिंग टू हैव, बट अगर हम ये सुबह सुबह ना देखें फोन, जैसे ही उठते हैं वैसे फोन ना देखें और पहले हम उठकर यू नो वी ओपन द कर्टन्स, लेट द ब्यूटिफुल सन रेज कम इन और स्ट्रेच अ लिटिल बिट, या सुबह सुबह पहले पहले अपने चाय की प्याली हो साथ में, तो कैसा लगेगा? और बेटर स्टिल इफ यू गेट टू लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग एंड यू गोइंग टू डू दैट ऑन फनीजिया रेडियो. व्हाट से

such a beautiful, cheerful song. That is the last song for my show today. Before I leave the studio, I want to make sure that you have marked your calendar for India's 80th Independence Day celebration by IANT. Aur ye hai Anand Bazaar jo ho raha hai Saturday, August 15th ko from 2 p.m. at the Comerica Center in Frisco. I want to tell you that this event is completely indoors and it is free for everyone. With that said, उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का ये कार्यक्रम आपको उतना ही पसंद आया जितना मुझे अच्छा लगा आप तक ले आने के लिए. ले आऊंगी फिर एक बार एक अनोखी प्रस्तुति अगले शनिवार ठीक 8 बजे. तब तक के लिए मुझे यानी कि संगीता बचानी को दीजिए इजाजत. साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टू गेदर.

0: 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi, ab sab kuch milega ek hi jagah, HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye aur is summer zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jaye aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB, here everything is better.
4: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
5: Filmon ka maza action, drama, aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast परफॉर्मेंस में,
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
7: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
8: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
9: Lekin aapke doctor ka appointment milna? उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे।
10: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
9: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम।
4: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun

चांद के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा।

उस दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

0: भागा भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा।
1: बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी

0: फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए, प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहां चारिया
1: tracks that put you on the right track.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद, फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल जस्ट चिल में हम करते हैं एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। वेल सैटरडे होता है हमारा ट्रैवल सेगमेंट, जहां मैं ले चलती हूँ आपको ऐसी एक खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जहाँ या तो आप जा चुके हैं या जाने का मन रखते हैं, या मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो डेस्टिनेशन आपकी बकेट लिस्ट में आ जाए। अब क्योंकि ये फ्रेंडशिप डे वीकेंड है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ ऐसी मल्टीपल डेस्टिनेशंस के बारे में बताऊं विच आर लाइक परफेक्ट टू गो आउट विद फ्रेंड्स, राइट। जहाँ चार यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार, राइट। सो इसी बात पर आज का हमारा जो ये सेगमेंट है वो आधारित है कि भाई दोस्तों के साथ, वैसे तो मैं तो कहती हूँ जहाँ भी हो बड़ा मज़ा आता है, बट देर आर सम डेस्टिनेशंस विच आर लाइक सो एप्ट फॉर फ्रेंड्स। एंड द फर्स्ट डेस्टिनेशन दैट कम्स टू माई माइंड, वेल वो बताऊंगी, लेकिन पहले अ बिग शाउट आउट टू संगीता फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM। एंड येस ऑफकोर्स जितना इंटरेक्शन हो इस शो में उतना ही अच्छा। सो स्टूडियो का नंबर 9722355555। अगर आपके जहन में कोई ऐसी डेस्टिनेशंस हैं या आप कहीं अपने दोस्तों के साथ गए थे और बहुत मज़ा आया तो ज़रूर हमारे साथ करिएगा शेयर। द नंबर वंस अगेन इज 9722355555। एंड एज आई वॉज सेइंग द फर्स्ट डेस्टिनेशन दैट कम्स टू माई माइंड वेन द आइडिया इज टू गो आउट विद फ्रेंड्स एंड हैव लॉट्स ऑफ फन is Goa.

Well, that was the Dil Chahta Hai track, and सच में दिल तो यही चाहता है कि दोस्तों के साथ रहें, मस्ती होती रहे, कुछ भी बुरा ना हो, लेकिन ना चाहते हुए भी कभी कभी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट में, या कहीं स्लिप या कोई फॉल इंसिडेंट में. और जब ऐसा होता है तो दिल इतना घबरा जाता है कि जो नॉर्मल बातें हैं ना वो भी याद नहीं रहती. तो कैसे याद रहेगा कि अभी मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? तो बस आपको अटर्नी ओमर ख्वाजा ये नाम याद रखना है, क्योंकि ये ना केवल आपका केस लड़ेंगे, आपको कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज का जो स्ट्रेस है वो भी वही झेलेंगे, एंड जब आप केस जीत जाएंगे तभी आप उन्हें पे करेंगे. यू डू नॉट पे अंटिल यू विन. सो एक फ्री कंसल्टेशन के लिए आप अटर्नी ओमर ख्वाजा को कॉल करें. द नंबर इज 4693005046, और यू कैन विजिट attorneyomar.com. राइट, सो दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी ओमर ख्वाजा. अच्छा, कमिंग बैक टू आर फ्रेंडशिप डे स्पेशल शो, राइट? सो दोस्तों के साथ आज हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ, वैसे तो मुझे लगता है कि हर डेस्टिनेशन में दोस्तों के साथ मज़ा आता है, बट देर आर पर्टिकुलर प्लेसेस जहाँ जाके आप और इन्जॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड दैट्स जनरली अ बीच. एंड यू नो, बीच हो और पार्टी हो रही हो तो बात ही क्या है, राइट? सो गोवा अगर आप जाएंगे सो यू कैन डेफिनेटली इन्जॉय द बीचेस, द बीच शैक्स, वाटर स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक फेस्टिवल्स.

Well, that was a दिन है, सनी सनी. एंड आज तो सच में दिन बहुत ज़्यादा ही सनी है. एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द फन थिंग्स दैट यू कैन डू विद फ्रेंड्स. सो एक रिक्वेस्ट है, एंड आई एम गोना प्ले दैट नेक्स्ट. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, एंड डू कीप शेयरिंग सम फन थिंग्स दैट यू डिड विद फ्रेंड्स इन डिफरेंट डेस्टिनेशंस एंड सम ब्यूटिफुल मेमोरीज दैट यू मे हैव. द स्टूडियो नंबर 972-235-5555.

Taken from the movie रंगदे बसंती, that was Loose Control. And yes, मैं तो कहती हूँ कि वो सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ जिससे दोस्त भी खुश रहते हैं, relatives भी खुश रहते हैं, मैं तो कहती हूँ आप खुद बड़े खुश रहते हैं, that is I believe jewelry shopping. हाँ, so आप श्री कृष्णा ज्वेलर्स पर जाएं, you know, जहाँ ज्वेलरी इज मोर देन एन एक्सेसरी. It's basically a reflection of tradition, of elegance and timeless beauty. आपको चाहे classic gold designs चाहिए हों, या आपको sparkling diamonds पसंद हैं, या फिर कुछ intricate kundan या stunning polki collections, well, दोस्तों के साथ जाएं because they can be really honest about कि क्या आप पे अच्छा लगेगा, क्या नहीं. And, you know, enjoy shopping at Shri Krishna Jewelers as every piece is crafted to celebrate life's special moments, you know. So they have a new location. It's at 13145 Suite 3220 Main Street, Frisco. Shri Krishna Jewelers, yaad rakhein, they are crafting fine jewelry and cherished memories since 1967.

104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, Just Chill. Well, आज ले चली हूँ आपको वो सब destinations जहाँ दोस्तों के साथ बहुत मजा आता है. एंड अभी हमारे पास एक लिसनर का कॉल आया था एंड उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई मेरे लिए तो जहाँ दोस्त मिल जाए वही एक डेस्टिनेशन हो जाती है. ही सेड दैट हम लोग यू नो वीकेंड्स पे घर पर मिलते हैं एंड दैट फील्स लाइक अ फन ट्रिप, यू नो, बिकॉज इतना हंसी मजाक होता है. वी पुल ईच अदर्स लेग एंड इट्स ऑलवेज समथिंग दे लुक फॉरवर्ड टू.

0: के चले।
1: जी हाँ, देखा दोस्त, तो ऐसे ही एक दूसरे की टांग खींचते हैं, यू नो, पार्टीज में इट्स ऑलवेज फन विद फ्रेंड्स। एंड एक और लिसनर का कॉल आया था, एंड अकॉर्डिंग टू शिफाली, उन्होंने बोला कि दोस्तों के साथ कोई भी कॉन्सर्ट्स हो रहे हों, कोई शोज़ हो रहे हों, उनमें जाने में बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज यू नो यू रियली वाइब अलॉन्ग विद द फन थिंग्स दैट्स गोइंग ऑन इन द शो और इन द कॉन्सर्ट। और उसी बात से मुझे याद आया कि आपको याद दिला दिया जाए कि आज आपके लिए ये अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट आ गया है। एंड अगर अभी तक आपने टिकट्स नहीं लिए हैं तो डिटेल्स आपको मैं अभी बता देती हूँ। जी हाँ, माथंगी एंटरटेनमेंट ग्रुप इज प्राउडली ब्रिंगिंग इंडियाज माइकल जैक्सन, जी हाँ, प्रभु देवा लाइव टू DFW। जॉइनिंग हिम आर लॉरेन गोटलेब, सोनल भदौरिया, अलेक्जेंडर नोएल, हरिणी नीलाकंतन, नताशा शर्पा एंड सानवी मेघना फॉर द अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट। ये हो रहा है आज शाम एट द टेक्सास ट्रस्ट CU थिएटर एट ग्रैंड प्रेरी। यू कैन बुक योर टिकट्स, यू कैन कॉल, द नंबर इज 248-233-3828। और अगर नंबर याद ना रहे, यू कैन ऑलवेज कॉल अस 972-235-5555। Or you can even, you know, go to the Fun Asia Network social media pages where you can easily book those tickets, as we have pinned those posts. So you won't be, you know, looking for it a lot. Saamne hi dikh jayega aapko. Of course, is concert ka media partner is Fun Asia Network. And that's Prabhu Deva live for you guys tonight.

taken from the movie Humse Hai Mukabla. That was Urvashi, Urvashi. And yes, of course, aaj hum baat kar rahe hain ki doston ke saath kaun kaun si jagah jo hain are fun destinations. So, ek baat pe aap, I'm sure, mujhse agree karenge ki jab aap college mein hote hain, you know, jo aapke college ke dost hote hain, and if there is a trip, you know, if there's a fun trip going, and wo shaam ko jab you know, bonfire होती है, कुछ लोग जिन्हें गिटार बजाना आता है वो गिटार बजा रहे होते हैं, एंड कुछ हंसी मजाक, कुछ अंताक्षरी, कुछ गाने वाने हो रहे होते हैं, उस बात का अलग ही मज़ा होता है. नहीं, और वो जो उसमें भी छेड़छाड़ हो रही होती है between boys and girls, it's so much fun.

taken from the movie Ye Jawani Hai Diwani. That was Subhanallah. And yes, today we are, you know, doing a Friendship Day special show and baatein kar rahe hain un destinations ki jahan par doston ke saath jaakar bahut maza aata hai. Jaise ki agar kahin aap koi trip pe gaye hain, you know, hiking gaye hain and bonfire ho rahi hai and doston ke saath baithe hain, that's another fun level altogether. अच्छा, एक और जगह जहां आप जा सकते हैं एंड साथ ही साथ यू कैन सेलिब्रेट इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे, जी हाँ वो भी बताऊंगी आपको, दैट यू कैन गो टू IANT's आनंद बाजार 2026 ऑन सैटरडे ऑगस्ट 15th. ये होगा 2 बजे के बाद से, राइट, 2 PM ऑनवर्ड्स एट द कमर्शिया सेंटर फ्रिस्को. द बेस्ट पार्ट, कम्प्लीटली इंडोर्स है भाई, हम भी जानते हैं इतनी गर्मी है, सो यू नो इट्स रियली रियली कन्वीनियंट, इट्स फ्री फॉर एवरीवन एंड इन्जॉय ऑथेंटिक इंडियन फूड, अ ग्रैंड परेड, कल्चरल परफॉर्मेंसेज. सो जो आपके दोस्त इंडियन नहीं भी हैं, दे कैन ऑल्सो गो विद यू एंड इन्जॉय, एज इज गोना बी अ ग्रैंड परेड. इंडियन फूड मिलेगा आपको वहाँ, कल्चरल परफॉर्मेंसेज हो रही होंगी, लाइव म्यूजिक, शॉपिंग एंड एन इनक्रेडिबल ड्रोन शो एंड फायरवर्क्स फिनाले. So bring your family, bring your friends and be part of North Texas' biggest Indian Independence Day celebration. Jiha, IANT, Anand Bazaar 2026 on 15th of August from 2 PM onwards at the Commercia Center, Frisco.

0: leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
15: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
14: सच में सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
16: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

it's perfect for groups of all ages. You know, it's surf simulator, we have zip line, ice skating, water slides, escape rooms, and Broadway style shows bhi hai. Then there's Carnival Cruise Line, then Norwegian Cruise Line. You know, Norwegian Cruise Line mein there's freestyle cruising, means flexible dining with no fixed schedules. So aapko jab man aaye तब जाकर कुछ भी खा सकते हैं. दिस ग्रेट नाइट लाइफ, यू नो, गो कार्ट ट्रैक्स भी हैं ऑन सिलेक्टेड शिप्स, एंड लेजर टैग, लाइव एंटरटेनमेंट, एंड आइडियल फॉर ग्रुप्स हु वांट फ्लेक्सिबिलिटी. सो डेफिनेटली दैट्स अनदर थिंग दैट यू कैन गो एंड एंजॉय विद फ्रेंड्स. दैट्स गो ऑन अ क्रूज, यू नो, सिंग सम सॉन्ग्स, इट्स ऑलवेज फन.

वॉज टेकन फ्रॉम दिल धड़कने दो. और अगर आपका दिल धड़क रहा है क्योंकि आप घबरा रहे हैं कि भाई कुछ टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, किससे पूछें, हु वुड हैव द राइट इन्फॉर्मेशन, देन आपको मैं बताऊं एजी फिनटेक्स के बारे में. एज दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. तो चाहे आपको बिजनेस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपके खुद के लिए चाहिए, देन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट ए जी फिनटैक्स. दे आर ट्रस्टेड, दे आर एफिशिएंट एंड दे गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 4699429888 और विजिट agfintechs.com. वेल, दिस पार्ट ऑफ आर शो इज ब्रॉट टू यू बाय ए जी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज टेकन from the movie Luck by Chance.

मैं ये तो दिल हारा, लेकिन आपके जीतने का टाइम आ गया है। गिव अवे, जी हाँ, सैन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से है ये गिव अवे, विच इज एनी डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी एट सैन्स इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन फूड। यहाँ मिलेगा आपको 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स एंड साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। भाई वीकेंड है तो सोचो कि आप उठें, आपको बिना कोई मेहनत के क्रिस्पी क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज मिल रही हो तो, और साथ में फिल्टर कॉफी, तो बात ही क्या है, राइट? फैमिली डिनर्स हो या केटरिंग सर्विसेज, आपको अगर जैन फ्रेंडली ऑप्शंस भी चाहिए देन विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट। दिस इज एट द हाईवे 121 एंड कस्टर जंक्शन। अच्छा, गिव अवे का सवाल ये है कि मैं दो विनर्स को चूज करूंगी एंड आपको मुझे बतानी है कोई भी ऐसी तीन ट्रिप्स या तीन डेस्टिनेशंस जो आप अपने दोस्तों के साथ जाना चाहेंगे, एंड साथ ही साथ उन तीन डेस्टिनेशंस या ट्रिप्स से करस्पॉन्डिंग तीन बॉलीवुड सॉन्ग्स। तो आपको, अगेन आई रिपीट, यू हैव टू टेल मी थ्री डेस्टिनेशंस और थ्री काइंड ऑफ ट्रिप्स दैट यू वुड लव टू गो विद योर फ्रेंड्स अलॉन्ग विद थ्री बॉलीवुड सॉन्ग्स और अ हिंदी पॉप एल्बम सॉन्ग्स विच करस्पॉन्ड टू दोज trips or to those destinations. So the studio number once again is 972-235-5555.

0: ऑलराइट, तो मैंने पूछा था आपसे सवाल कि मुझे कॉल करके बताएं कोई भी तीन ऐसी डेस्टिनेशंस या ट्रिप्स जो आप करना चाहेंगे अपने दोस्तों के साथ, एंड साथ ही साथ थ्री बॉलीवुड या हिंदी पॉप एल्बम कोरस्पॉन्डिंग सॉन्ग्स विच वुड गो फॉर दोज डेस्टिनेशंस और ट्रिप्स. एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: माय नेम इज जय कुकरेजा.
0: हाय जय, हाउ आर यू?
1: I'm doing good. How are you?
0: I'm doing great. Thank you. So, बताइए कौन सी वो तीन destinations हैं जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ जाना चाहेंगे? And then
1: one would be California, Zurich, and Spain.
0: Okay, and why is that?
1: So California, if you remember that Salman Khan movie, Jeene Ke Hai Char Din.
0: Right.
1: And then Zurich would be Shah Rukh Khan's Dil Wale Dulhan Le Jayenge.
0: Okay.
1: Ho gaya hai kuch kuch paisa sajna.
0: Bilkul.
1: Driving in that. Convertible.
0: Aha, acha, okay, all right.
1: And then in Spain, zindagi na milegi dobara.
0: Okay, done. Lekin mujhe bataen ki why did you choose these three destinations?
1: Sorry?
0: Why did these three destinations come to your mind? Have you already been to a trip with them, or you are planning, or like why did you think of these trips?
1: Because I knew these three songs only that I could recall.
0: Very smart. Okay, Jay. So congratulations. आपने San Italy restaurant की तरफ से जीत लिया ये giveaway. I'm gonna take you off air while I'm gonna play that. You know, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में वो जो एक Tomatina festival celebrate हो रहा है दोस्तों के साथ. It's a fun song. I'm gonna play that for our listeners and I'll take you off air for some details.
1: Okay, all right? Thank you.

0: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए, रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
1: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
2: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
3: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
4: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
3: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
4: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
3: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
4: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
3: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
5: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
6: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं।
5: What?
7: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
8: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
9: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
10: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
12: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
13: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
12: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
14: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
15: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Funasia 104.9 FM.

Well, this is Madhulika. लेकर आई हूँ जस्ट चिल, दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. एंड जी हाँ, कुड़ी नू नचने दे, ये बात और कोई माने या ना माने, भाई जो हैं अपनी बहन के लिए ज़रूर ये बिलीव करते हैं कि यार लेट माई सिस्टर चिल, यू नो, जस्ट लीव हर अलोन. एंड इसी बात पर यू नो अब राखी आ रही है. जी हाँ, रक्षाबंधन भी आ रहा है. सो दिस रक्षाबंधन, फन एशिया रेडियो एंड चौक टाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरॉन्ट want to hear your most unforgettable memory with your brother or sister. वो होता है ना कि हमारे पास इतनी सारी प्यारी प्यारी यादें रहती हैं, कुछ यू नो कुछ शरारतें हमने की हैं या कुछ इमोशनल हमने चीज़ें शेयर की हैं. सो हम चाहते हैं दैट यू सेंड अस अ वन मिनट वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप. द नंबर इज 2148377147 एंड देन यू कुड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग यू नो डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौक टाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरॉन्ट. सो आई रिपीट, यू नीड टू शेयर अस अ वन मिनट वॉइस नोट जिसमें आप शेयर करेंगे आपकी भाई या बहन की कोई खास मेमोरी. And you can, you know, do this fun note and send it to WhatsApp us at 2148377147. And again, you can win those exciting daily prizes. Well, for complete contest details, check out Funisha Radio social media pages, Chalk Tower Casino and Resort, Durant, where unforgettable memories are made together. Must be 21 years older to participate. Ji haan, you need to be 21 or older to participate. Terms and conditions do apply. Please play responsibly.

हेलो स्टेकन फ्रॉम द मूवी युवा. एंड यस, हम बातें कर रहे हैं राइट, कि दोस्तों के साथ. वैसे तो माया ऑल्सो बिलीव कि कोई भी जगह, कोई भी डेस्टिनेशन, बस दोस्तों से मिलना ही काफ़ी होता है टू हैव लॉट्स ऑफ फन. बट वी आर टॉकिंग अबाउट डेस्टिनेशन दैट यू कैन गो टू विद फ्रेंड्स एंड एन्जॉय अ लॉट. सो वन ऑफ दैट डेस्टिनेशन कुड बी लंडन. आप लंडन जाकर, यू नो, इट्स रियली लॉट्स ऑफ फन, स्पेशली इफ़ यू गो इन समर, तो बहुत मज़ा आता है. एंड आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग रिक्वेस्ट नेक्स्ट. लेकिन उसके पहले आपको मैं तारा कमर्शियल एनर्जी के बारे में बताना चाहूँगी, बिकॉज यू नो दिस इन्फॉर्मेशन इज स्पेशली फॉर बिजनेस ओनर्स, एज इफ़ यू आर लुकिंग for a smart commercial energy solution, you know, a smarter one, then you need to trust Tara Commercial Energy, proudly serving Texas business since 2002 with competitive rates, reliable service and customized energy plans. तो आपके जो energy bills हैं, they can definitely come down. They have a very competitive rate and they will try to give you the best service possible. So do call them. The number is 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. So yes, as I was saying, कि आज हम बातें कर रहे हैं कि दोस्तों के साथ कौन कौन सी वो डेस्टिनेशन हैं जहाँ जाकर यू कैन इन्जॉय फुल ऑन. सो वन ऑफ देम इज़ डेफिनेटली लंदन.

taken from the movie Cocktail, that was Daru Desi. And अगर आप किसी भी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं एंड आपको यू नो जल्दी से एक अपॉइंटमेंट चाहिए एंड यू फील कि यार डॉक्टर पूरा टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज दे जस्ट सी यू फॉर लाइक 5 मिनट्स 10 मिनट्स, देन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को रखें याद, बिकॉज यहाँ पर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. यहाँ पर आप एक पेशेंट नहीं, यू आर कंसिडर्ड फैमिली, एंड सो बेसिकली पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर जो है इज देयर फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, राइट? सो 30 मिनट काफ़ी होते हैं, राइट? इट 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल, या फिर अगर कहीं आपको एन्जाइटी केयर या फाइब्रो स्कैन फॉर अल्कोहल करवाना है, या रिलेटेड लिवर, यू नो फाइब्रो स्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हैं कोई, या फिर वाइटामिन B12 डिफिशेंसी की टेस्टिंग हो, या देर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर अवेलेबल एट पैशन हेल्थ. सो आप अपना अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करें आज ही. द नंबर इज 214-666-6259. Passion Health Primary Care. Your health is our passion. And my passion is to give you lots of information, make sure that you listen to some nice, you know, melodious songs. And today in Just Chill, we are talking about fun places that you can go to with friends and have lots of fun. So another one would be, you know, to going to those Disney parks. Chahe wo aap Orlando mein jaye ya California mein jaye. It's always fun because doston ke saath wo jo aap rides par jayenge ya jo queue mein aapko wait bhi karna padta hai, you don't mind because you're having fun with your friends anyways.

वेल, अगर आपका दिल पगलाया जा रहा है कि आपको फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए और समझ नहीं आ रहा कि किससे ली जाए, देन माई टाइम इक्विटी कैन रियली हेल्प यू. जी हाँ, माई टाइम इक्विटी लेड बाय CPA सुधीर पाई, ये ऑफर करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एज वेल, राइट? तो आप विजिट करें mytimeequity.com या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं. द नंबर इज 4697021272. That's 4697021272.

Well, it's never about money in friendship, right? And we are celebrating Friendship Day weekend, right? So, मज़ा आया मुझे. एक और डेस्टिनेशन आपको बता सकती हूँ जो आप जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड दैट्स न्यूयॉर्क, बिकॉज दैट्स अनदर प्लेस वेयर यू कैन डू सो मेनी थिंग्स एट सो मेनी डिफरेंट टाइम्स दैट पूरा दिन, इनफैक्ट कई दिन आप बिता सकते हैं अपने दोस्तों के साथ विद फुल ऑफ एक्टिविटीज़ एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू एंड हैव फन विद. वेल, मुझे मज़ा आता है आप लोगों के साथ ये शो करने में. एवरी सैटरडे एंड संडे जस्ट चिल लेकर आती हूँ आपके लिए, एंड इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय. बट आप कहीं जाइएगा नहीं, डू स्टे ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, एज यहाँ हमारे शोज आपको एंटरटेन करते रहेंगे. कमिंग अप नेक्स्ट इज नीलम. मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 10 बजे अगेन. यू नो वील बी सेलिब्रेटिंग फ्रेंडशिप डे, भाई कल ही है तो याद रखिएगा. कोई अगर डेडिकेशन है, कोई गाने हैं जो सुनने का बड़ा मन हो, या कुछ मैसेज है जो आपको अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, देन 104.9 FM फन एशिया रेडियो इज वेयर यू नीड टू कॉन्टैक्ट. सो मिलूंगी आपको कल सुबह 10 बजे इन जस्ट चिल, जहां करेंगे हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

आज हम आप जानते हैं कि अमूमन जो 2 बजे तक कार्यक्रम लाते हैं आपके लिए, वहाँ कहीं ना कहीं किसी शब्द पर आधारित गाने, किसी एक ही फिल्म विषय की फिल्मों की बातें, कोई ऐसी बातें जहाँ पर आपकी राय हम लेते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। और हम अक्सर कहीं ना कहीं किसी कलाकार को भी सेलिब्रेट करते हैं उनके जन्मदिन को मनाकर। तो आज हमारी जो अभिनेत्री है जिनका जन्मदिन हम मना रहे हैं, वो है जन्मदिन आज नहीं, लेकिन देखिए हमारी और आपकी मुलाकात होती है सिर्फ वीकेंड्स में, तो भाई हमारी सेलिब्रेशन तो वीकेंड्स में ही रहेगी, है ना। उनका जन्मदिन है अगले हफ्ते 5th ऑफ अगस्त, तो उनके जन्मदिन को कुछ एडवांस में हम उनको हैप्पी बर्थडे कह देंगे।

दिस इज़ के जी एम पी 104.9 एफ एम फन एशिया रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से 12 से 3 बजे तक आपका और हमारा साथ होगा। 2 बजे तक कुछ बॉलीवुड के गाने, थीम बेस्ड गाने और 2 से 3 के बीच में प्रस्तुत करूंगी आपके लिए ही कार्यक्रम आप ही का कार्यक्रम जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप। मधुलिका को आपने सुना टिल 12 एंड अब मैं आ गई हूँ आपके लिए टिल 3। जी हाँ, और

जी, मैं तो अभी अभी आई हूँ, तो ऑफकोर्स जाने की बात अभी नहीं करूँगी। जाने के लिए थोड़े से 3 घंटे, बिल्कुल 3 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा यहाँ पर। और आज हम मना रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपकी कॉल्स के लिए। जी बिल्कुल, 5th ऑफ अगस्त, काजोल मुखर्जी का जन्मदिन, काजोल देवगन का जन्मदिन मना रहे हम यहाँ पर आज 2 बजे तक। उनके गाने, कुछ बहुत दिलचस्प बातें, कहानियाँ होगी आप ही के साथ।

एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत। और आज हम मना रहे हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही ऐसी खास अदाकारा जिन्होंने हमेशा अपनी मुस्कान से, अपनी आंखों के जादू से, जो आंखों से बातें करती है ना, जी हाँ, अपनी आंखों से, अपनी मुस्कान से, अपनी दमदार एक्टिंग से करोड़ों करोड़ दिलों पर राज किया और बहुत सारे सालों तक अब भी कर रही है। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं यहाँ पर काजोल जी का जन्मदिन, जिनकी हंसी बिल्कुल बेफिक्र। जब भी वो हंसती है, चाहे वो शूटिंग के दौरान हो, ऑफ शूटिंग हो, कोई इवेंट में हो या कहीं टीवी पे हो, वहीं उनकी हंसी। और जिनकी आंखें कभी कभी अपने उनकी जब भी वो फिल्म्स होती है, उनके जो भी सीन्स होते हैं, मोर देन हर डायलॉग डिलीवरीज, इट्स हर आइज, आंखों से वो बहुत कुछ कह देती है। तो बस वही काजोल की करेंगे हम बातें, उनके गाने, उनके कुछ सवाल होंगे, उनके करियर से, उनकी ज़िंदगी से, कुछ आपकी पसंद, कुछ हमारी पसंद रहेगी आप ही के साथ टिल 2 PM ऑन 104.9 FM फनीशा।

सलमान खान और काजोल को दोनों को साथ में डांस करना देखना वो भी एक अलग बात है, राइट? द रीजन आई एम सेइंग इज कि देखिए, सलमान खान साहब ने कभी भी क्लेम नहीं किया कि भाई आई एम द ग्रेटेस्ट डांसर ऑन द अर्थ, राइट? सिमिलरली काजोल ने भी अक्सर ये अपने इंटरव्यूज के दौरान कहा है कि भाई डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझसे एक्टिंग करवा लो, मुझसे दमदार एक्टिंग करवा लो फॉर दैट मैटर, लेकिन डांसिंग की बात आती है तो सॉरी, आई एम नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ डांसर. अब दोनों साथ में इस फिल्म में ओढ़ ली चुनरिया तेरी, प्यार किया तो डरना क्या इज द फिल्म नेम, वहाँ पर अगर डांस करेंगे तो क्या बात होगी. खैर, ये सारी बातें हम करते रहेंगे आपके साथ टिल 2 PM ऑन दिस सेगमेंट जिसका नाम है सुरीले लम्हे. मैं हूँ नीलम, आपके साथ 2 से 3 के बीच में प्रस्तुत करती हूँ आपके लिए कम्युनिटी राउंडअप. और आज कुछ ऐसे बातें होगी, उनके गाने होंगे और उनसे ही जुड़े हुए कुछ किस्से होंगे, किस्से और कहानियाँ, पूछेंगे कुछ सवाल उनकी फिल्मों से, उनकी करियर से, क्योंकि आप सभी है काजोल के फैन. एंड यू नो वेदर इट इज़ अ काजोल और एनी अदर एक्टर, आप सभी है बॉलीवुड के, मैं कहूँगी वो वॉट इज दैट नेम, 30 मार्का. यस, 30 मार्का है. 30 मार्का है जहाँ पर आपको कोई भी सवाल पूछो, कोई भी बात हो, आपको सारी जानकारी होती है. तो बस ऐसे ही आपसे कुछ बातें होती रहेंगी टिल 2 PM ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो. आज हम मना रहे हैं थोड़ा सा जल्दी काजोल जी का जन्मदिन ऑन 104.9 FM.

0: काजोल जी का जन्मदिन मना रहे हैं हम यहाँ पर 104.9 FM फनेशिया रेडियो, और होगा थोड़ी सी ही देर में कमर्शियल ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, साथ में रहेंगे हम 3 बजे तक, जी हाँ, टिल 3 PM, और 2 बजे तक हम बातें करेंगे उन्हीं की फिल्मों से, एंड 2 to 3 PM हम कुछ बातें करेंगे कम्युनिटी की, कम्युनिटी राउंड अप में आपके लिए मैं नीरम लाती हूँ नॉन प्रॉफिट इवेंट्स और एक्टिविटीज की जानकारी, और हमारे साथ जुड़ते हैं किसी भी सामाजिक या धार्मिक संस्था के प्रतिनिधि। ये सारी बातें, ये सारे गाने आप ही के लिए ओनली ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो, और मैं हूं नीलम, आपके वीकेंड की राहों की रह गुजर। कुछ ऐसे गाने होते हैं जिसके अंदाज से मैं उम्मीद रखती हूं कि आपकी आफ्टरनून ज्यादा म्यूजिकल बन जाए, विषय कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, गाने ऐसे होते हैं सैटरडे हो या संडे जिससे हम आपकी आफ्टरनून को बनाते हैं म्यूजिकल। आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, लेकिन आपकी राहों में हम रहते हैं रेगुजर की तरह, और आपको साथ देते हैं संगीत के साथ। जी हाँ, हर कोई दिन वीकेंड।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
3: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
4: Register free now at meditation.funasia.net.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
11: तो चल उन सेल्फी से पिज्जास खाते हैं।
10: व्हाट,
12: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड। ऑफर वैलिड टिल August 3rd। विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast परफॉर्मेंस में।
17: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
16: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
17: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
18: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
19: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750, call 214-529-3257.
18: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

0: एंड वेलकम बैक, दिस इज केजीएमपी 104.9 एफएम फनी शरीरों पे. आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ एक बार फिर से आपका और हमारा साथ रहेगा 3 बजे तक 2 बजे तक. ये बॉलीवुड के गाने आपको सुनवा रही हूँ मैं, जहाँ पर आज हम एक ऐसी चुलबुली अदाकारा का जन्मदिन मना रहे हैं और उनका नाम है काजोल. हमेशा अपनी शर्तों पर वो जी, हमेशा अपनी शर्तों पर उन्होंने फिल्में की और वहीं दिलकश मुस्कान और वहीं आंखों से बात करती है वो अपनी हंसी. जहाँ जहाँ भी वो हंसती है, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही बेफिक्र सी उनकी हंसी होती है, चाहे ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन इवेंट हो या प्राइवेट इंटरव्यूज हो, कहीं पर भी, लेकिन वहीं हंसी. और दैट इज काजोल. स्वागत करती हूँ. और जैसे कि मैंने कहा, 2 बजे तक यही गाने, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से आपके लिए हम लाएंगे. लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे प्रायोजक ड्रीम मॉर्गेज का, जिनका नंबर है 9722455626. चाहे आपका पहला घर है, आप अपग्रेड करा रहे हैं या रिफाइनेंस करा रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल मदद करेंगे हुसैन भाई पंजवानी. ड्रीम होम मॉर्गेज में आज ही कॉल कीजिएगा 9722455626 और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com. ज्वेलरी एक ऐसी बात है, जहाँ पर भी ज्वेलरी का नाम आता है, डायमंड्स के नाम आता है, बहुत सारी जो महिलाएं होती है, लाइक यू नो देयर आर एक्सेप्शन राइट, लाइक जैसे कि मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ज्वेलरी, बट खैर जहाँ जहाँ भी ज्वेलरी का नाम आता है, डायमंड्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ वीमेन. तो चलिए मैं आपको तनिष्क का नाम दे देती हूँ, क्योंकि तनिष्क में अब आप 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस. जी हाँ, आपने सही सुना, यू कैन एन्जॉय अप टिल 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड. यानी कि अगर आपके पास कोई पुराने गहने हैं, पुराना सोना है, सेट वगैरह आप एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको 0% डिडक्ट होगे एंड 25% ऑफ ऑन एनी डायमंड वैल्यू. तो बहुत ही अच्छी बात मैंने आपको बताई. आज वीकेंड के दिन में आप जा सकते हैं, सैटरडे है, संडे है, वीकडेज में भी कभी जा सकते हैं. एंड दैट इज तनिष्क इन फ्रिस्को. वंस अगेन, इट इज तनिष्क इन फ्रिस्को. चलिए हमारे ये म्यूजिकल बातें, म्यूजिकल सफर जारी रहेगा 2 बजे तक. ले चलती हूँ मैं आपको अगले गाने की तरफ. और इस गाने के बाद मैं आपको पूछूंगी एक सवाल. कौन सा सवाल? आप तो है भाई, मैंने जैसे कहा, 30 मार्क का हमारे बॉलीवुड के धुरंधर है, हम एक से बढ़कर एक हमारे लिसनर है जिन्हें हर कोई जानकारी होती है. तो एक थोड़ा सा, छोटा सा, आसान सा सवाल होगा इस गाने के बाद.
1: सिर्फ तुमको हमने चाहा, चाहत की कसम.

0: काजोल की बात कर रही हूँ, और जैसे कि मैंने कहा कि सवाल पूछने जा रही हूँ। देखिए, काजोल के लिए उनके खून में, ब्लड में एक्टिंग है, राइट? वो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कोई क्लासिकल फॉर्मल एक्टिंग के क्लासेस नहीं लिए, फिर भी जब भी वो पर्दे पर आई, जैसे कि जादू सा छा गया। एंड ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज़ टू हर अलॉन्ग विथ हर रिलेटिव, उनके ब्लड, उनके जीन्स, जो भी आप कहते हैं। तो मम्मी के लिए तो सभी जानते हैं कि वो तनुजा है, उनकी नानी का नाम शोभना समर्थ है, वो भी हम जानते हैं। पापा का जिक्र बहुत कम होता है उनके पापा के साइड का, जो पैटर्नल उनके अंकल्स है या पैटर्नल उनके साइड है, दादा दादी वगैरह वगैरह। तो इतने लंबे हम नहीं जाएंगे दादा दादी तक, लेकिन आप मुझे बताइए कि उनके जो पिताजी है उनका नाम क्या है। 104.9 FM फनीशा रेडियो पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ, और मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि मम्मी का नाम तो बहुत ही फेमस है, बार बार हमने भी आपसे कहा है कि तनुजा एंड शोभना समर्थ, लेकिन पापा के लिए इतनी जानकारी कम मिलती है या उनके जो पैटर्नल रिलेटिव्स है। तो आप मुझे बताएंगे उनके कुछ दादा दादी या उनके पापा के बारे में। एंड फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: काजोल्स फादर्स नेम इज शोमू मुखर्जी।
0: यस, शोमू मुखर्जी। और आपको पता है कि वो क्या करते थे?
1: या ही वाज अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर।
0: वंडरफुल। सी, देखिए इसीलिए मैंने कहा कि हमारे धुरंधर है लिसनर्स। एक से बढ़कर एक।
1: काजोल इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट एक्ट्रेस सिंस द टाइम ऑफ बाज़ीगर, सो आई ऑलवेज हैव बीन इन द नो ऑफ हर।
0: आप उन्हें, आप, आई एम श्योर आपने उनकी सारी फिल्म्स देखी होगी, बार बार देखी होगी, है ना?
1: या डेफिनेटली।
0: और आपका नाम क्या है मैम?
1: सुनीता।
0: थैंक यू सो मच। एंड फनीश, आई लॉस्ट दैट लाइन। शोभना समर्थ और तनुजा की बेटी, लेकिन पोती और बेटी किनकी? फनीश, आई योर लाइव ऑन एयर।
2: शोमू मुखर्जी।
0: शोमू मुखर्जी। और आपका नाम क्या है मैम?
2: सुरोमा।
0: थैंक यू सुरोमा जी, कीप लिस्टिंग मैम। एंड फनीश, क्या बताएंगे आप उनके पापा के लिए?
3: जी, उनके पापा का नाम शोमू मुखर्जी था।
0: जी जी बिल्कुल। और कुछ जानकारी?
3: मूवी डायरेक्टर। ही वाज अ मूवी डायरेक्टर।
0: यस ही वाज। कुछ बातें, कुछ जानकारी, कुछ कहानियां आप हमें बताते हैं, कुछ जानकारी हम आपको देते हैं, अलॉन्ग विद ब्यूटीफुल सॉन्ग्स टिल 2 PM।

फना फिल्म सुना आपने गीत काजोल। जी हाँ, श्रोमो मुखर्जी की बेटी। श्रोमो मुखर्जी जो काजोल के पिताजी है, जाने माने फिल्म निर्देशक एंड निर्माता भी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोथ। उनकी एक फिल्म आई थी पत्थर के इंसान, रिसेंट वही मुझे याद आ रही है। ऑफकोर्स उन्होंने 80s में एंड 70s में बहुत सारी फिल्म्स वो बनाते थे, लेकिन रिसेंटली रिसेंट मैं कह रही हूँ 30 साल पहले की बात को, क्योंकि उसके बाद शायद इतनी उन्होंने फिल्में नहीं बनाई थी। लेकिन पत्थर के इंसान, इफ़ यू रिमेंबर, रवीना टंडन के साथ जो सलमान खान की फिल्म थी, ही वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म जिसका नाम था पत्थर के इंसान। और उसके अलावा उन्होंने ऑफकोर्स 80s में 70s में बहुत सारी फिल्म प्रोड्यूस की थी। एंड ही इज श्रोमो मुखर्जी, जिनका निधन हो चुका है 2008 में। और जैसे मैंने कहा कि देखिए, काजोल की एक्टिंग जो है, अदाकारी, उनको फिल्म में देखकर या उनको पर्दे पर देखकर, पहली फिल्म में ही जब वो आई थी, लग नहीं रहा था कि वो उनकी पहली फिल्म है। सो उनकी कड़ी मेहनत होगी, लेकिन कभी कभी सम किड्स आर बॉर्न, जैसे कि कोई बच्चे होते हैं जिसे हम बिस्किट्स कहते हैं, उनके पास वो ब्लेसिंग्स होते हैं, उनके पास उनके पेरेंट्स के जीन्स होते हैं, उनके खून में वो होती है सारी बातें। तो काजोल के साथ भी यही कुछ बातें हैं। उनके जो दादा है, उनका नाम है शशधर मुखर्जी, जो एक दिग्गज फिल्म निर्माता थे ड्यूरिंग 40s, और उन्होंने फिल्मिस्तान स्टूडियो 40s और 50s में ये स्टूडियो की उन्होंने स्थापना की थी, जहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म्स बनती थी इन 40s। उनकी जो दादी है, पैटर्नल ग्रैंड मदर की मैं बात कर रही हूँ, उनका नाम है सती रानी देवी। अगर आपको ये नाम जाना जाना लग रहा है, तो वो इसीलिए क्योंकि गांगुली ब्रदर्स जो है, अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार, उनकी वो सगी बहन थी, दैट इज सती रानी देवी। तो उनकी जो सगी बहन थी, और इसी तरह से अशोक कुमार की जो फैमिली है, वो भी काजोल से रिलेटेड है। सो शशधर मुखर्जी का ये पूरा परिवार और गांगुली ब्रदर्स भी काजोल से रिलेटेड। सिमिलरली तनुजा एंड शोभना समर्थ, उनकी जो मैटरनल फैमिली है, वो भी बहुत टैलेंटेड। तो जहाँ टैलेंट ही टैलेंट भर के पड़ी थी भाई, तो काजोल को ऐसा बनना ही था।

0: जी गेरुआ रंग तो पता नहीं, लेकिन धूप बहुत है जी बिल्कुल। इस कड़ी धूप में अगर आप बाहर हैं तो बिल्कुल संभालिएगा, और अगर आप बाहर हैं तो आई एम श्योर फॉर लंच, ग्रोसरीज, लंबी सी टू डू लिस्ट, कुछ ना कुछ शॉपिंग आपकी बाकी है, बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ है, वेल आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी लिस्ट है, जो भी आपके काम है, हम आपके साथ रहेंगे 3 बजे तक। और अगर आप लंच की फिक्र कर रहे हैं तो वरी नॉट, क्योंकि हम आपको ऐसे इनाम देते हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। इफ़ यू आर अराउंड द गार्लैंड एरिया यू कैन गो टू तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट, जहाँ पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स होते हैं, रिच करीज होते हैं, ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, एंड वंस अगेन दैट इज तंदूरी फ्लेम्स। अगर अभी तक आप नहीं गए तो किसका इंतज़ार है, ज़रूर जाएगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को भी लेकर जाएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड दैट इज़ तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट इन गार्लैंड। एजी फिनटेक्स एक ऐसा नाम जिनके लिए बिल्कुल आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स के साथ बिजनेस को भी हेल्प कर सकते हैं, दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट, एंड दे कैन गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर। वंस अगेन दैट इज़ एजी फिनटेक्स, 4699429888, that is AG Fintechs. ये तो हो गए हमारे प्रायोजक जिनका हम करते हैं शुक्रिया अदा, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत आप हमें सुनते हैं, फनेशा रेडियो को सुनते हैं, और मुझे आप सुनते हैं ओनली ऑन सैटरडेज एंड संडेज। जी हाँ, आपका और हमारा म्यूजिकल साथ होता है ओनली ऑन द वीकेंड्स। जी बिल्कुल, सैटरडे एंड संडे होता है साथ 12 से 3 के बीच में सैटरडे, जहां पर आज 2 बजे तक ये थीम बेस्ड गाने प्रस्तुत कर रही हूं काजोल के जन्मदिन को लेकर। 2 से 3 के बीच में जो बातें होगी वो होगी हमारी कम्युनिटी के हवाले से, कम्युनिटी राउंड अप, जहां पर नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी इवेंट्स, एक्टिविटीज की जानकारी, हमारे साथ जुड़ते हैं किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि। दैट इज एवरी सैटरडे टिल 3 PM। एंड संडेज यानी कि कल आपकी और हमारी मुलाकात होती है 12 से 2 के बीच में, जहां 12 से 1 के बीच में कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूं, रीजनल कार्यक्रम। एंड राइट आफ्टर दैट इट इज वंस अगेन 104.9 FM पे आपका और हमारा साथ होता है 1 से 2 के बीच में कुछ गैर फिल्मी गाने। जी हां, अगर आपने अभी तक वो सेगमेंट नहीं सुनेगा जरूर सुनेगा, इट इज बियॉन्ड बॉलीवुड। बियॉन्ड बॉलीवुड यानी कि आपके लिए लाते हैं हम कुछ प्राइवेट एल्बम्स के गाने, वेब सीरीज की बातें, OTT प्लेटफॉर्म्स की फिल्मों की बातें, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट एल्बम के, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के गाने, बातें आप ही के साथ होते हैं हर शनिवार की दोपहर नहीं लेकिन रविवार की दोपहर 1 से 2 के बीच में। कहीं मत जाएगा।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सस, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सस, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTechs, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Beta, 95% aaye?
8: Haan, mummy.
7: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
9: Mera?
7: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
9: वो
10: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
11: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स

0: Contracts led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
1: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
2: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: इस रक्षाबंधन चौकटॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
0: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
4: हाय, दिस इज प्रियंका चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो.

और इस बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत ऑन 104.9 FM फनीशिया रेडियो। मैं हूं नीलम, आपके साथ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आज हम मना रहे हैं जन्मदिन उस अदाकारा का जिनका जन्मदिन आज नहीं है, बाय द वे इट्स ऑन 5th ऑफ अगस्त। लेकिन जैसे अक्सर हम कहते हैं, मुलाकातें होती है सिर्फ सैटरडेज एंड संडेज, और इसमें सैटरडेज होती है थीम बेस्ड गाने, तो हम मना रहे हैं आज उसी अदाकारा का जन्मदिन जिन्होंने अपनी बहुत ही खूबसूरत मुस्कान, आँखों की जादू और दमदार एक्टिंग, उनकी एक्टिंग कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैं यही रोल करूंगी, मेरे सिर्फ रोमांटिक रोल होंगे, मेरे सिर्फ यही रोल होंगे, मैं पत्नी का रोल निभाऊंगी। अभी शी डिड व्हाट शी वांटेड टू डू। इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पे काम किया। कभी भी डायरेक्टर ने कहा कि भाई ये ज़रूरी है सीन के लिए, कहानी के लिए, तो उन्होंने कहा डायरेक्टर को बबाए कि भाई ज़रूरी है तो आप कोई और ढूंढ लीजिए। कभी भी उन्होंने ये नहीं रखा कि अगर मुझे ये फिल्म नहीं मिली तो क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, ये कभी भी उनमें वो इनसिक्योरिटी नहीं थी, एंड दैट इज़ काजोल। चलिए ये गाना सुन लेते हैं, बाद में मैं आपकी राय पूछना चाहूँगी, जवाब नहीं पूछूंगी। सी जवाब यानी कि आपको पक्का यकीन होना चाहिए, दैट इज़ आंसर। राय यानी कि आप आपकी ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस गाने के बाद।

0: कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, लेकिन हम यहाँ पर हैं और उम्मीद रखती हूँ आप भी यहाँ पर ही हैं। हमें सुन रहे हैं 104.9 FM फनेशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। शशधर मुखर्जी की पोती और तनुजा मुखर्जी, उनके साथ सोमो मुखर्जी की बेटी यानी कि काजोल, काजोल मुखर्जी, काजोल देवगन की बातें कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिनमें बहुत सारी टैलेंट भर भर के पड़ी है, क्योंकि उनका पूरा परिवार, पैटर्नल साइड या मैटर्नल साइड की बात कर ले, पूरा परिवार है फिल्मी परिवार। काजोल ने जब 17 साल की उम्र में पहली फिल्म की थी बेखुदी, जो खुद ठीक ठाक चली थी, लेकिन ऑफकोर्स जैसे ही वो पर्दे पर आगे लगा था कि ये बच्ची जो है वो बच्ची नहीं है, वो एक्टिंग की धुरंधर है, तो वहां से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर ली थी 1993 की। अगर आपको बाजीगर याद है, बाजीगर में भी लग नहीं रहा था कि उनकी दूसरी फिल्म होगी फॉर दैट मैटर। बहुत सारी उन्होंने फिल्में करी है, और जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ, आपकी राय पूछ रही हूँ। सवाल नहीं पूछ रही हूँ कि उनको किन किन फिल्मों में अवार्ड मिला था। फिल्म के लिए कहा जाता है काजोल को फिल्म फेयर क्वीन, यानी कि अब से बहुत सारी अभिनेत्री को हुआ होगा, लेकिन काजोल को सबसे ज़्यादा, वन ऑफ द एक्ट्रेस, आई वुड से नॉट ओनली एक्ट्रेस, वन ऑफ द एक्ट्रेसेस, कि जहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं, बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं, कुछ उनको और भी अवार्ड्स मिले हैं। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स में उनके नाम पे 5 फिल्म्स हैं अब तक के लिए, एंड ऑफ कोर्स उन्हें पद्मश्री भी मिला है। तो जितनी भी फिल्म्स आपने देखी है उनकी आज तक, जहाँ से 90s से शुरुआत कर उनकी रिसेंट फिल्म्स में, अगर आपके हाथ में है फैसला, आप किन किन फिल्मों को, चलिए एक या दो नाम बता दीजिए, आप उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देंगे? और अक्सर मैं कहती हूँ कि आप है ज्यूरी मेंबर, जहाँ पर भी हम कोई फिल्मी कहानी का सेगमेंट लाते हैं या एक ही साल में रिलीज हुई फिल्मों की मैं बातें करती हूँ, तब भी मैं आपको बताती हूँ किन को मिला, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि किस फिल्मों के लिए आप उन्हें देना चाहे। देखिए, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म की है, राइट? दिलवाले की बात कर ले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, गुप्त, दुश्मन एंड फना बहुत उनकी अच्छी थी, माय नेम इज़ खान अच्छी थी, तानाजी अच्छी थी, बहुत सारी फिल्म उनकी जितनी भी आपको याद है, उनमें से अगर आपके हाथ में फैसला है कि आपको उनके अवार्ड देना है, तो किन किन फिल्मों को देंगे? एंड फनेशिया, यू लाइव ऑन एयर।
1: हाय,
0: हाय, क्या है
1: माय
0: आपके?
1: नेम इज शिखा।
0: जी शिखा जी, बताइए।
1: मेरा आंसर होगा दुश्मन। दुश्मन मूवी
0: यस,
1: के में उनका डबल
0: दुश्मन।
1: रोल था एंड
0: हाँ,
1: आई लव दैट
0: आई
1: पिक्चर।
0: नो, आई नो, मी टू, मी टू। एंड मैं भी उनको वही फिल्म में दूंगी, क्योंकि यू नो, नॉट ओनली दैट, जो एक सिस्टर का उन्होंने रोल किया था, एक सिस्टर की उन्होंने जो भूमिका निभाई थी दुश्मन, अगर आपने अभी तक वो फिल्म नहीं देखी, जरूर देखेगा। तनुजा चंद्रा की फिल्म है एंड अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फिल्म, उनकी जो अदाकारी थी वंडरफुल। तो चलिए, दुश्मन के लिए उन्हें एक अवार्ड मिल गया, आप और किन फिल्मों के लिए देंगे? 104.9 FM फनेशिया रेडियो।
2: मामा, नैना, दिया और हम

0: दुश्मन फिल्म में जिसमें उनका डबल रोल था, और मैंने आपसे आपकी राय पूछी थी कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी दमदार एक्टिंग वाली फिल्म्स की है, लेकिन अगर आपके हाथ में फैसला है तो आप उनको किन फिल्मों के लिए अवार्ड देंगे? इट कुड बी मोर देन वन, आप क्यों एक में ही इंतजार करती है? एंड फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hi.
0: हाय.
1: Yeah, my opinion would be that she deserves an award for Gupt.
0: गुप्त के
1: Definitely
0: लिए.
1: Bazigar as well, because that was her first movie and she did such an incredible
0: आई नो
1: job.
0: सेकंड एक्चुअली उनकी पहली फिल्म बेखुदी थी, जहाँ पर
1: Oh, yeah.
0: या वो पुनर्जन्म की
1: That
0: कुछ
1: was
0: बात थी,
1: true.
0: रिमेम्बर, जहाँ पर वो कुछ ऐसी बात थी. सो दैट वाज हर फर्स्ट फिल्म एंड सेकंड फिल्म वाज बाजीगर. लेकिन अगेन, यू नो,
1: That's
0: लग नहीं
1: right.
0: रहा था कि उनकी सिर्फ सेकंड फिल्म है, राइट?
1: I
0: शी
1: know.
0: वाज सो कॉन्फिडेंट, सो कॉन्फिडेंट इन दैट.
1: Basically, yeah, I forgot about it totally. But yeah, she's just lived her character in all of those movies.
0: Yes, she has.
1: To say the least, you know, I just like her real life personality more than the movies she's acted
0: Right.
1: for.
0: But, you know, for that matter, I have never seen a difference between her real life personality and her characters that she
1: True,
0: plays,
1: true.
0: right?
1: That's 100%,
0: She is not somebody
1: yeah.
0: who would put up at a face. जहाँ पर भी वो
1: Correct.
0: सेट पर आती है, तो जो आई एम श्योर कि वो उनकी जो ऑफ पर्सनैलिटी है, वही ऑन एयर पर्सनैलिटी, लाइक ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी
1: Yeah.
0: दिखती है. एंड दैट इज द साइन ऑफ अ ट्रू आर्टिस्ट, कि जहाँ पर
1: True.
0: शी डजंट हैव टू प्रिटेंड टू समबडी हु शी इज नॉट, कि वो कभी भी, आई डोंट थिंक कि शी इज प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स, कि मैं बहुत ही सीरियस किस्म की हूँ बंदी. ऑफकोर्स शी डज अ गुड एक्टिंग, लेकिन फिर भी उनकी आंखें हमेशा हंसती
1: Yeah.
0: रहती है. सो थैंक यू मैम.
1: Definitely, I think
0: यस
1: that is why most people love her more than her acting is because of her true self.
0: हर ट्रू सेल्फ, राइट राइट. एंड सी इट, दैट इज वॉट आई थिंक एन आर्टिस्ट शुड बी, राइट? कि जो आप है वही नजर आए, जो आप में है वही दिखाए. डोंट प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स. तो बहुत बहुत
1: True, because
0: शुक्रिया.
1: people are trying to look up to you in a way.
0: यस, एब्सोल्युटली. एंड मैं एक्चुअली उनकी बातें करने वाली थी आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक, लेकिन उनका एक टॉक शो भी आया था, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैड सीन दैट. दैट वॉज विथ ट्विंकल खन्ना. टू मच Something too
1: Yes,
0: much.
1: I have
0: too
1: seen
0: much.
1: it on Netflix.
0: Yes,
1: I have
0: yes,
1: already
0: yes.
1: watched it.
0: So, you know, in that show, she was like so much of her own self. बहुत बहुत ही बिंदास उनकी बातें थी. लेकिन वो सारी
1: I
0: बातें.
1: thoroughly enjoyed it. It was like, you
0: Yes.
1: know, it was really good. The way
0: Absolutely.
1: she is. I mean, I would just watch whatever. If she is there, yeah, definitely I will have watched it.
0: Wonderful. Thank you, ma'am, for coming on air. जी, मैं सवाल नहीं आपसे राय पूछ रही हूँ कि कौन सी फिल्म ऐसी है जहाँ पर आप उन्हें दे देंगे अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस. गुप्त एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर उन्होंने विलन का रोल किया था. एंड जस्ट अ स्मॉल थिंग कि पहली बार इंडस्ट्री में किसी एक्ट्रेस ने एक्सेप्ट किया था ये कि मुझे एक्ट्रेस नहीं बेस्ट विलन का रोल का मिलेगा. एंड दैट्स वॉट हैपन इन दिस ईयर. उन्हें जो अवार्ड मिला था दैट वॉज नॉट फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस. कैटेगरी वॉज बेस्ट विलन.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Jaane wo kaun sa desh jahan tum chale gaye.
2: Aapka doctor gaya long vacation par, koi baat nahi. Passion Health Primary Care ke multiple locations, experienced physicians ke saath quality care kabhi nahi rukti. Aur sirf treatment hi nahi, aaj hi apna annual physical schedule kijiye. Regular screenings ke saath depression aur anxiety screening, alcohol health screening, fibro scan, vitamin B12 testing aur bahut kuch. Passion Health Primary Care, healthcare that never takes a vacation.
3: Call 214-666-6259 to book your appointments today.
4: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax. Your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
3: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer, enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. Ab har bite ke saath milegi extra savings. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: फॉर डेकेड्स वन मैन हैज मेड द वर्ल्ड डांस। Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
13: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
14: एंड वेलकम बैक, दिस इज़ KZMP 104.9 FM फन एशिया रेडियो पे, मैं हूँ नीलम आपके साथ। वंस अगेन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम। प्यार भरा स्वागत है आप सभी का यहाँ पर इस कार्यक्रम में। आज आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ कुछ गाने काजोल पे फिल्माए हुए, उनकी फिल्मों से बातें, कुछ किस्से कहानियाँ, कुछ उनकी ज़िंदगी की बातें, कुछ उनके परिवार की बातें और बहुत सारी आपकी राय और जानकारी। टिल 2 PM होगा ये सेगमेंट। चलिए पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को बिल्कुल याद कर ले, क्योंकि अगर आपके लिए अगर हेल्थ अच्छी है तो पूरा जहां आपके साथ है ना। सेहत है तो बिल्कुल पूरी दुनिया आपके साथ है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो उसी के लिए एक अच्छे प्राइमरी केयर का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, प्राइमरी केयर फिजिशियंस का होना, एंड दैट कुड बी योर नेक्स्ट प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं 214-666-6259, दैट इज वंस अगेन 214-666-6259। चाहे आपके एनुअल फिजिकल की बात हो, एंग्जाइटी केयर की बात हो, अल्कोहल रिलेटेड लीवर कंसर्न्स की बात हो, विटामिन डेफिशिएंसी की बात हो, कोई भी बात है, एक ही नाम है, दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। हेल्थ की बातें की है तो चलिए कुछ जिंदगी के बहुत अहम किस्से और हमारी भी कहानियां होती है जिसे हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, छोटी बात हो या बड़ी। सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है जिंदगी में, एक्सक्यूज जरूरी है दोस्त और परिवार को मिलने के लिए, और इसी एक्सक्यूजेस को हम कहते हैं इवेंट्स इन योर लाइफ, राइट। तो इवेंट प्लानिंग के लिए चाहे हाउस वार्मिंग की बात हो, ग्रेजुएशन की बात हो, वेडिंग की बात हो, एक ही नाम है, दैट इज वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर 4694428770। वंस अगेन दैट इज 4694428770। आज ही आप कॉल कर सकते हैं हरी बसेरा को, चाहे कैटरिंग के लिए या हॉस्पिटैलिटी की फोटोग्राफी, सारी बात। वंस अगेन इट इज 4694428770। वेल, आपका और हमारा साथ होगा 2 बजे तक। इस सेगमेंट में 2 से 3 के बीच में होगी कम्युनिटी की बातें, और मैंने आपसे आपकी राय पूछी थी कि अगर आप काजोल के फैन हैं, आपने बहुत सारी उनकी अच्छी अच्छी फिल्म देखी है, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसे आप अवार्ड देना चाहेंगे उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए, उनके दमदार एक्टिंग के लिए, 1, 2, 3 जितनी भी फिल्म आपको याद आए, क्योंकि उन्हें अवार्ड्स मिले हैं 5 या 6 फिल्मों के लिए। आप 1 या 2 तो याद कर लीजिए, 9722355555। वंस अगेन दैट इज 9722355555। मैं हूँ नीलम, आप ही के साथ ऑन 104.9 FM।

0: माय नेम इज खान से सुना आपने ये गीत, और मैंने जैसे कि कहा कि काजोल ने 5 या 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते, आपकी भी राय लेना चाहूंगी। एंड फनीश, आर यू लाइव ऑन एयर?
1: हाय
0: हाय जी, बताइए क्या है आपकी राय, आप किस फिल्म को देगी अवार्ड?
1: मैं तो गुप्त को दूंगी, दो मूवी को दूंगी।
0: हाँ बिल्कुल, दो मूवी को दे दीजिए।
1: एक गुप्त और एक बाजीगर।
0: बाजीगर और गुप्त दोनों को आप देगी, क्या बात है। और आपका नाम क्या बताया आपने?
1: मेरा नाम यासमीन है, मेरे पास और एक मूवी है लेकिन कभी खुशी कभी गम भी मुझे।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि देखियो बकायदा आपके हाथ में है आज तो अवार्ड, जितने भी आप उनको देना चाहे। तो चलिए, तीन फिल्मों के लिए मिल गए उनको अवार्ड, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उन्हें 6 फिल्मों के लिए अवार्ड्स मिले हैं सो फार। अगर आपकी राय हो, आपके हाथ में हो फैसला, तो किन किन फिल्मों को देंगे? मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे ऑफर कॉल्स भी मैं ले रही हूँ इस गाने के बाद कि उन्हें ऑफिशियली किन फिल्मों के लिए मिले हैं। आपको आपकी राय तो है ही, और उसके बाद कुछ बातें करेंगे उनकी OTT एंट्री के लिए। क्या है ये बातें? जस्ट आफ्टर फ्यू सॉन्ग्स। और अगर आपकी राय अभी भी बाकी है तो बिल्कुल बताइए भाई, क्या है आपकी राय। एंड योर लाइव ऑन एयर, रेडियो की आवाज प्लीज।
1: हाय
0: हाय जी, बताइए।
1: मैं तो दूंगी फना को।
0: फना को आप देंगी, चलिए बिल्कुल, एक ही फिल्म के
1: लिए। She was a blind girl in that movie, right?
0: Yes, absolutely. And she did a wonderful job with Aamir Khan. उस फिल्म में बहुत अच्छी अदाकारी थी।
1: Absolutely.
0: Wonderful. और एक ही फिल्म देंगी आप, और एक फिल्म को नहीं देंगी, एक ही फिल्म?
1: अरे वो उनकी तो जो भी फिल्म देखो वो ही होती है, तो किसको यू नो। और वो जो शाहरुख खान के साथ थी, माय नेम इज खान,
0: माय नेम इज खान को भी आप देगी, चलिए।
1: लाइक आफ्टर हर सन पासेस अवे द वे शी वाज, इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। या
0: ग्रेट ग्रेट रोल ऑफ अ मॉम जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।

0: कभी ना कहे ना अलविदा, लेकिन जो आता है उन्हें अलविदा भी होना ही होता है। तो मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहूंगी 3 बजे तक ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो। बहुत सारे ऑफ एयर कॉल्स ले रही हूँ ताकि आपको गाने भी सुनवा सकूँ और हमारे लिसनर्स से बातें भी हो पाए यहाँ पर टिल 3 PM। काजोल की इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स है कि जब भी अगर आपको फैसला करना हो तो बहुत ही मुश्किल हो सकती है बातें, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक से ज़्यादा उन्हें अवार्ड्स मिले हैं। फॉर एग्जांपल गुप्त के लिए उन्हें बिल्कुल अवार्ड मिला है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए, कुछ कुछ होता है में उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था, कभी खुशी कभी गम इन 2001, फना के लिए उन्हें अवार्ड मिला था इन 2006, माय नेम इज खान के लिए 2010 में। नाउ ये सारी लिस्ट में दुश्मन का नाम नहीं है, जी नहीं, दुश्मन को अवार्ड नहीं मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला था। सबने अपनी अपनी राय दी है, ज़्यादातर लोगों ने मुझे गुप्त कहा, दुश्मन कहा, माय नेम इज़ खान, एंड सिमिलरली आई वुड आल्सो गो विद द सेम नेम्स। मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी दुश्मन, उनमें जो उन्होंने एक सिस्टर का रोल, एक बहन का रोल निभाया था, जो अपनी सिस्टर के लिए, अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगना चाहती है, लेकिन जब उन्हें इंसाफ नहीं मिलता बाय द लीगल वेज और द ऑफिशियल वेज, तो वो क्या करती है। एंड इट्स अ ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड कि वॉट इज़ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ फैमिली मेम्बर। तो वो जो उनकी अदाकारी है, यू नो, एंड वेन यू वॉच हर ऑन द बिग स्क्रीन, लगता नहीं है, सम एक्टर्स डोंट कम अक्रॉस एज एन एक्टर, यानी कि लगता नहीं कि वो, उन्हें डायरेक्टर ने बुलाए कट एंड वो सीन इनेक्ट कर रही है, वही लगता है कि वाकई में उनकी बहन के साथ ऐसा हुआ होगा। सिमिलरली इन माय नेम इज़ खान, द वे शी वॉज यू नो पोर्ट्रेइंग हर कैरेक्टर, की जो ओटिज़म है, उनके पति जो है, ही इज़ एन ओटिस्टिक गाय, राइट, उसके साथ पहले तो लव स्टोरी करना, उसके साथ शादी करना, एंड द वे शी बिहेव्स विथ हिम बहुत ही प्यार से, और जैसे कि ही इज़ अ नॉर्मल गाय, ही इज़ अ नॉर्मल हस्बैंड, जैसे कि हर किसी का हस्बैंड होता है, वैसे ही एक नॉर्मल वाइफ हस्बैंड की जो लाइफ होती है, जो रूटीन होता है, वहीं दिखाती है वो। एंड आफ्टर दैट When her son died, which is like the disaster of her life, अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़ा खतरनाक हादसा हो सकता है जिनके साथ वो हुआ है, and how she behaves then with her husband, with the society, with everybody around her. Beautifully, beautifully done, and I totally, totally loved her in that film, and उसे उन इस फिल्म के लिए भी उन्हें अवार्ड मिला था, which was My Name is Khan. चलिए, ये तो अवार्ड्स की बात हो गई। इस गाने को सुनने के बाद हम कुछ उनकी OTT प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। एक फिल्म का नाम मैं आपको बताऊंगी, शॉर्ट फिल्म है उनकी, जो शायद आपने नहीं देखी होगी, नहीं देखी है तो आज ही देख लीजिएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी शॉर्ट फिल्म और आपको बहुत पसंद आएगी, अबाउट काजोल।
1: और तोहफा जो तुम चाहो।
2: तो वचन दो, दुल्हन की तरह सच के हमारा स्वागत करो।

कान्हा जी से सुना आपने ये गीत जो उन्होंने अपने पति के साथ फिल्म प्रोड्यूस की थी। ओटीटी में हर कोई कलाकार आता है तो भाई काजोल क्यों रह जाए, राइट? एंड शी इज सच ए वंडरफुल एक्ट्रेस कि जहाँ पर भी वो जाएगी अपना जादू बिखेरेगी ही। ओटीटी पे एक शो है जिसका नाम है ट्रायल बाय फायर, जिसकी सीजन 2 भी आ चुकी है। अगर आपने ये शो नहीं देखा ज़रूर देखेगा। ऑफकोर्स इट इज़ इंस्पायर्ड, इट इज़ नॉट एन ओरिजिनल शो, लेकिन फिर भी जिस तरह से उनका रोल है एंड अगेन द सेम वाइफ एंड मदर का उन्होंने रोल निभाया है। द शो इज़ कॉल्ड ट्रायल बाय फायर। उसके अलावा ओटीटी पे उन्होंने दो पत्ती नाम की एक फिल्म थी उसमें, जिसमें उन्होंने पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था। देन लव स्टोरीज 2 भी ओटीटी फिल्म है। सरजमी भी ओटीटी पे ही आई थी, कश्मीर की बैकग्राउंड पे बनी थी वो फिल्म। एंड वन फिल्म विच इज़ सच एन आउटस्टैंडिंग फिल्म, जिसका नाम था त्रिभंगा। जी हाँ, त्रिभंग जो है उसमें 3 जनरेशन की बात थी एंड इट इज़ अगेन अ नेटफ्लिक्स फिल्म थी। आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। ये फिल्म भी बहुत अच्छी रही जिसका गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। उसमें उनकी मम्मी के साथ, उनकी बेटी के साथ उनका जो रिलेशनशिप है एंड इट्स अबाउट द 3 जनरेशन ऑफ द फैमिली, जिसका नाम है त्रिभंगा। तो ज़रूर देखिएगा। एंड जो शॉर्ट फिल्म की मैं बात बताने जा रही हूँ आपको इस गाने के बाद, थोड़ा सा इंतज़ार, शॉर्ट है, छोटी सी फिल्म है तो थोड़ा सा छोटा सा इंतज़ार हो जाए इसके लिए। लेकिन सुनते हैं फिलहाल ये गीत जो है फ्रॉम द फिल्म त्रिभंगा।

और मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ है जो गाना मैं बहुत ही प्यार से चाव से आपके लिए लाई हूँ और सुनवाना चाहती हूँ, वो नहीं सुनवा पा रही हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, तब तक के लिए सुनेंगे ये गीत। त्रिभंगा की बात करेंगे इस गाने के बाद, एंड वन मोर फिल्म जिसका नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, अ शॉर्ट फिल्म राइट आफ्टर दिस।

काजोल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत ही छाई हुई है, जैसे कि उनकी बहुत सारी फिल्म्स आपने अब तक देखी होगी। टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल टॉक शो भी आपने देखा होगा। वंडरफुल वंडरफुल, जैसे लग रहा है कि दोस्तों के साथ वो बातें कर रही है अपनी ही धुन में, अपनी ही मस्ती में। एंड दैट इज़ टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, जिसकी सीजन 1 आ चुकी है। सीजन 2 विल ऑल्सो कम इन समटाइम सून। तो जो शॉर्ट फिल्म की मैं बातें कर रही थी आपसे, वो है देवी। जी हाँ, एंड शॉर्ट यानी कि इट्स नॉट इवन, आई डोंट थिंक इट्स इवन अ 30 मिनट लॉन्ग, उससे भी छोटी होगी। इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप देख सकते हैं उसे। देवी नाम है उसका, 2020 में रिलीज़ हुई थी और इतनी शॉर्ट है कि, और उसकी जो कहानी है, इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक, लेकिन आपको वो कहानी का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो अंत में पता चलेगा। आफ्टर द एंटायर मूवी इज़ ओवर, देन यू विल रियलाइज़ कि वॉट वॉज द फिल्म ऑल अबाउट। और उसमें उनका जो रोल है, उनका नाम ही है देवी इस फिल्म में। वंस अगेन, इट इज़ कॉल्ड देवी, काजोल की फिल्म है। इट्स अ शॉर्ट फिल्म जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था, नॉट एनी फिल्म फेयर या ऐसे कोई हमारे जो कमर्शियल अवार्ड्स, लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स अवार्ड उन्हें मिले थे। एंड 30 मिनट्स में या इन शॉर्ट मिनट में, जितनी भी ड्यूरेशन में, एक पूरे विषय को दिखाना ऐसे, और एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा ही ऐसा कर सकती है कि एक जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, सेंसिटिव विषय है, उसे किस तरह से बहुत ही बखूबी दिखाना ऑन द सिल्वर स्क्रीन। तो दैट इज़ ऑल अबाउट काजोल। मैं हूँ नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन 104.9 FM फनी शहर रेडियो।

0: 89914.
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
2: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
0: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
0: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
4: इन टुडेज बिजी वर्ल्ड, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.

दिस इज के जी एम ब्यूरो 4.9 एफएम फनी शरीर पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत आपका इस कार्यक्रम में, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं बहुत सारे हमारे ही कम्युनिटी में होने वाले इवेंट्स की और एक्टिविटीज की जानकारी, आपके लिए लाते हैं कुछ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल गाने एंड हमारे साथ जुड़ते हैं शनिवार की दोपहर धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि। ये सारी बातें, ये सारे गाने आप ही के लिए, आप ही से बनता है ये कार्यक्रम, आप ही के लिए होता है ये कार्यक्रम हमारे साथ हर शनिवार की दोपहर ऑन 104.9 एफएम।

0: 104.9 FM फनीशा रेडियो पे स्वागत है आपका एक बार फिर से, और ये है आपका कार्यक्रम जिसका नाम है कम्युनिटी राउंडअप। जी हाँ, और मैं हूँ आपके लिए प्रस्तुतकर्ता, मेरा नाम है नीलम, और दिस शो इज़ ब्रॉट यू बाय अवर सीईओ वैशाली ठक्कर, अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी, जहाँ पर हम आपके लिए बहुत सारे हमारे शहर में होने वाले कम्युनिटी इवेंट्स की जानकारी लाते हैं। चलिए, अब फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक ऐसे इवेंट के लिए हमारे प्रतिनिधि, जहाँ पर आप होंगे दीपक भाई देसाई के साथ। जी हाँ, आत्मज्ञानी श्री दीपक भाई देसाई विल बी इन द टाउन इन दिस वीक, तो उनसे कुछ जानकारी लेंगे हम कहाँ पर है ये और कौन कौन सी जानकारी हमें देंगे। फनीशा रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, दिस इज फनीशा एंड यू आर लाइव।
1: प्रणाम, जय सच्चिदानंद फ्रॉम दादा भगवान परिवार। यहाँ सब हमारी टीम, हम लोग सब साथ में है।
0: जी जी जी, so tell us something about the event which is happening in this week. I believe it is August 6th and also August 7th, right? दो दिन होने जा रही है।
1: Yes.
0: So if you can give us some information about that, please.
1: Sure. Okay. We have हमारा जो program है,
0: जी,
1: वो है self realization and आध्यात्मिक प्रवचन का program है। August 6th Thursday from 7 to 9 and Friday August 7th 6:30 to 10 p.m.
0: Right. राइट राइट,
1: और जो फ्राइडे का दिन है ना, उसमें ज्ञान विधि का प्रोग्राम है।
0: जी जी,
1: उसमें आप सेल्फ रियलाइजेशन हो सकते हैं कि ये जानना है कि मैं कौन हूँ, वही आत्म साक्षात्कार है।
0: जी,
1: और जो ज्ञान विधि है ना, इट्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर ट्रू सेल्फ, दिस इज सिंपल येट प्रोफाउंड प्रोसेस, हेल्प्स रिमूव इनर कंफ्यूजन and brings lasting peace and clarity.
0: Right, right, right. Great, great. तो ये दो तीन है आपके लिए, एंड लेकिन अगर रजिस्टर करवाना हो, हमारे लिसनर जो सुन रहे हैं श्री दीपक भाई देसाई के लिए, अगर रजिस्टर करना हो ये इवेंट में, what is the website and what are the phone numbers that they can call in?
1: Sure. I will give you phone number first.
0: जी.
1: 877-505-3232 extension 1026.
0: Okay.
1: And website address hai sc@us.dadabhagwan.org.
0: Great, wonderful, wonderful. So once again that aur number, जी जी बताइए।
1: हाँ जरूर, नंबर फिर से बता रही हूँ। 877-505-3232 एक्सटेंशन 1026।
0: सो ये होने जा रहा है, एक बार हमारे लिसनर्स को फिर से याद दिला दूं, वी आर टॉकिंग टू श्री दादा भगवान टीम कमेटी एंड श्री दादा भगवान आत्मज्ञानी श्री दीपक भाई देसाई जो होंगे यहाँ पर हमारे साथ होंगे थर्सडे विच इज ऑगस्ट 6, 7 टू 9 पीएम, फ्राइडे ऑगस्ट 7 दैट इज 6:30 टिल 10 पीएम, एंड द वेन्यू इज 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन डालस फोर्ट वर्थ, एंड द नंबर टू कॉल इज 1-877-505-3232. That is 1-877-505-3232, extension is 1026. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और कुछ ऐड करना चाहें कि आप हमारी कम्युनिटी के लिए, फॉर एंटायर लिसनरशिप की, जहां पर कुछ और मैसेज देना चाहे आप इस इवेंट के लिए?
1: जरूर, हाँ हाँ, ये जो इवेंट है वो बिल्कुल फ्री है
0: जी,
1: और वहाँ पार्किंग भी फ्री मिलेगा
0: जी।
1: सत्संग गुजराती में होगा, लेकिन ट्रांसलेशन के लिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज
0: Wonderful. So, आप कोई भी भाषा समझते हैं, यू कैन स्टिल गो बिकॉज देयर विल बी ट्रांसलेटेशन अवेलेबल फॉर एनी ऑफ योर लैंग्वेजेस दैट यू वुड प्रेफर टू लिसन इन। सो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू लिसन।
1: वन मोर आई फॉरगेट टू ऐड,
0: यस प्लीज,
1: यस, वी हैव अ प्रसाद, तो ऑल हम लिसनर को बोलते हैं कि आप जरूर फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर आओ और सबको बोलो और रजिस्टर करना।
0: ग्रेट ग्रेट, सो प्रसाद की भी
1: पूरी टीम हमारी आपको धन्यवाद बोलती है।
0: थैंक यू सो मच,
1: अपॉर्चुनिटी।
0: जी जी, ऑफकोर्स, एंड 6th एंड 7th अगस्त भूलिएगा मत, जय सच्चिदानंद जी, जहां पर आप जा सकते हैं 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन और श्री दीपक भाई देसाई इन डालस। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां फॉर ब्रिंगिंग दिस वंडरफुल इवेंट टू डालस।
1: थैंक यू,
0: थैंक यू। कार्यक्रम हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं शनिवार की दोपहर बिटवीन 2 and 3 PM। यह है आपका कार्यक्रम, हमारी पूरी कम्युनिटी का कार्यक्रम, ब्रॉट टू यू बाय अवर सीईओ वैशाली ठक्कर।

0: प्रभु देवा लाइव। जी हाँ, आज शाम आप जा सकते हैं टेक्सास रस्सियू थिएटर ग्रैंड प्रेरी में, जहाँ पर अगर आपको टिकट्स के लिए और भी जानकारी चाहिए, इट इज़ 2482333828। मीडिया पार्टनर इज़ फन एशिया। पूरी टीम के साथ है प्रभु देवा लाइव, एंड आज बिल्कुल शाम को होगी उनके साथ लॉरेंस, सोनल, अलेक्जेंडर, हरिनी एंड नताशा। तो ये सारे बातें डांसिंग ऑन द फ्लोर, एंड इट इज़ हैपनिंग एट टेक्सास रस्सियू थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी टेक्सास। नंबर टू कॉल इज 2482333828, दैट इज 2482333828। और भी कुछ बातें बाकी है, और भी कुछ इवेंट्स की जानकारी बाकी है, हमारे साथ जुड़ेंगे संस्था के प्रतिनिधि, धार्मिक संस्था नहीं, एक सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि, जिनसे करेंगे हम कुछ बातचीत फॉर देयर अपकमिंग फंड रेजिंग गाला। इसके अलावा कुछ और गाने आप ही के पसंद के, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल। सारे गाने, सारी बातें आप ही के साथ प्रस्तुत करती हूँ मैं नीलम, हर शनिवार।
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
3: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
2: Register free now at meditation.funasia.net.
4: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
5: तो चल उन सेल्फी से पिज़्ज़ास खाते हैं।
4: What?
6: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
7: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
8: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
9: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit myfamilyhomeloan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. Myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
13: or sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
12: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

0: Once again, a very, very warm welcome, प्यार भरा स्वागत आपका इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप। जी हाँ, आपके लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए कार्यक्रम मैं नीलम प्रस्तुत करती हूँ और ये शो आपके लिए प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ ऑफकोर्स वैशाली ठक्कर का होता है साथ, क्योंकि दिस इज द हम्बल अटेम्प्ट टू हेल्प द एंटायर कम्युनिटी ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो। कार्यक्रम के दौरान आपके लिए हम बहुत सारे गाने, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल गाने लाते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं हर शनिवार की दोपहर किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम जी एंड सुपो जी, जो हमें कुछ जानकारी देंगे फॉर देयर अपकमिंग फंड रेजिंग गाला विच इज हैपनिंग ऑन 28th of August बाइकल फाउंडेशन। सो करेंगे हम उनसे कुछ बातचीत। एंड नमस्कार बोथ ऑफ यू, आर लाइव ऑन एयर एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सर।
1: जय श्री कृष्ण। नीलम जी, वी हैव आवर सीनियर एडवाइजर सुबू जी विद अस।
0: जी जी जी जी सर, वंडरफुल वंडरफुल। सुबू जी एंड प्रेम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो एकल फाउंडेशन के लिए अगर आप कुछ जानकारी दे पाए एंड अबाउट, ऑफ कोर्स देन वी विल टॉक अबाउट दैट अपकमिंग इवेंट, लेकिन उससे पहले हमारे लिसनर्स अगर उन्होंने कोई बात ना सुनी हो एकल के लिए और कुछ आप अगर कहना चाहे तो।
1: जी सुबू जी,
2: गो अहेड प्लीज। ओके, नमस्कार एवरीवन। एकल इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ऑपरेटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द नीडी चिल्ड्रन इन द रिमोट विलेजेस एंड ट्राइबल विलेजेस ऑफ इंडिया सिंस 1983 एंड इट इज द मेन मिशन इज ब्रिंगिंग लिटरेसी, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी टू रिमोट विलेजेस इन इंडिया। सो दिस इज द great cause and it will use all the donation money. Almost 94% of the money received goes for the end cause.
0: Mm-hmm.
2: So please attend the event on August 28th and then support the event and make your money donation valuable, and it will reach the needy people. And you can reach out to ekal.org/USA for more information.
0: Great, great. So it is ekal.org/USA and the event is happening on August 28th. It is Kathak on the Silver Screen. So Prem Bhai, tell us something about the event itself and the timings and kahan pe ho raha hai ye?
1: Ye Garland jo city ka center hai, wahan pe 28 August ko ho raha hai, August 28th.
0: Mm-hmm.
1: And it is starting with 5 o'clock dinner and 7 p.m. program time.
0: Wonderful, wonderful.
1: एंड ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम पहले एकल के बारे में बताएंगे एंड देन प्रोग्राम विल स्टार्ट। इट इज लाइक 1.5 hours ऑफ स्ट्रेट प्रोग्राम वेयर बॉलीवुड 75 years वेयर कथक वॉज यूज, लाइव प्रेजेंटेशन फ्रॉम अखिला जी हू इज वर्ल्ड नोन एंड 20 ऑफ हर डांसर्स विल हैव लाइव प्रेजेंटेशन। वेरी वेरी नाइस शो। वी हैव सीन दैट शो इन देयर अदर लोकेशंस लाइक इन ह्यूस्टन एंड इट इज वंडरफुल वंडरफुल शो, समथिंग टू वॉच।
0: यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड इट इज हैपनिंग ऑन ऑगस्ट 28th एंड व्हाट आर द टाइमिंग्स सर, व्हाट टाइम द शो विल स्टार्ट?
1: 5 to 7 डिनर एंड 7 ऑनवर्ड्स द प्रोग्राम विल स्टार्ट।
0: 5 p.m. onwards. All right. Very good. Very good. Aur tickets ke liye, once again, you can log on to ekalfoundation.org/USA. Aur ek Prem bhai, I know you were talking about free tickets giveaway. Toh hamari community ke liye, of course, ye ek bahut hi achhi baat hogi ke itna achha bhavya show wo dekh payenge. तो आपको भी सपोर्ट करना है, लेकिन हमारे लिसनर्स अगर वो कॉल करे तो इफ यू कैन गिव अस देम सम क्वेश्चन एंड मे बी दे कैन कॉल यू बैक विद आंसर वेर यू कैन गिव अवे सम टिकट्स।
1: Yeah, so Subbu ji, we have one question. We will ask one right now and then we will take the calls, whoever can answer, and
0: sure,
1: we have
0: sure.
1: 10 tickets to give away today.
0: Please, please tell me. So what is the question we can ask on air?
2: Yes, Neelamji, thank you so much for the opportunity given, and Premji. And the question is very simple. Ekal Vidyalaya runs a unique model of one teacher schools in rural India.
0: Mm-hmm.
2: So approximately how many villages does Ekal serve today through its education and development programs? I'll repeat the question. Approximately how many villages does Ekal serve today through its education and development programs? Please call the number. Premji will give the number and we'll pick it up and we'll verify and then reach out to you whether you have won the raffle, whether you have won the prize to attend the event. Go ahead, Premji.
0: So, Subodh ji, ye thoda sa tough ho gaya, lekin I hope ki mere listeners wo question ko samajh kar answer de paaye. But I'm sure our listeners are very smart. They will find out somehow or somewhere.
2: Yeah, exactly.
0: Ji, ji, Subodh ji. I'm glad. So, Prem bhai, aapka number agar please aap de paaye to.
1: Yeah, 817-915-3907.
0: Okay. So, मैं रिपीट करना चाहूंगी हमारे लिसनर्स के लिए इट इज प्रेम भाई नंबर इज 817-915-3907. सो प्रेम भाई कितनी टिकट्स आप दे रहे हैं चलिए अगर आपको आज 10 कॉल्स आ गए तो आप सारे 10 लोगों को देंगे जस्ट स्पेसिफाई हाउ मेनी कॉलर्स दे कैन कॉल इन
1: या 10 टिकट्स वी विल गिव अवे टुडे
0: ओके एंड दोस टिकट्स विल इंक्लूड जस्ट द शो
1: नो शो एंड द डिनर बोथ
0: Oh wow! So listeners, आपके लिए बहुत अच्छे
2: बढ़िया है खाना भी मिल रहा है
0: बिल्कुल बिल्कुल एकल फाउंडेशन की तरफ से तो आपको बस एक ही काम करना है जो सवाल आपको पूछा गया है सुपो जी की तरफ से कि एकल फाउंडेशन कितने विलेजेस को सपोर्ट करता है अगर आपको ये जवाब पता है प्लीज कॉल एट द नंबर 817-915-3907 फिर से मैं रिपीट करती हूँ 817-915-3907 For one ticket, जी हाँ आपको एक ही टिकट मिल सकती है because they would try to make sure कि there are 10 different winners so ताकि सबको मौका मिले इस बात का प्रेम भाई बहुत बहुत धन्यवाद of course हम एक बार फिर से बात करेंगे आपके साथ before the event and good luck for the event I know all of you are working very very hard इस event के लिए तो आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभेच्छा
1: Yeah, thank you so much, Neelam ji. And I want to clarify that we'll keep on getting more questions if, you know, listeners can call this number. And 10 winners, you know, we will give 10 tickets today.
0: Wonderful, wonderful. So, of course, I will ask the question and they can call to Prem Bhai's number, 817-915-3907. Once again, it is 817-915-3907. And it's a free ticket giveaway by Ekal Foundation.
2: That includes dinner.
0: That includes dinner, absolutely. इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है?
2: नीलम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको.
0: जी सर.
2: Prem and Panacea and Neelam ji, we are thankful to you. You have been supporting Ekal for many, many years.
0: Yes.
2: Thanks for your great program and looking forward good response from the listeners.
0: Yes,
2: thank you.
0: Absolutely,
2: धन्यवाद.
0: Sir. Thank you
1: thank
0: so
1: you,
0: much.
1: Thank you so much.
0: धन्यवाद, sir.

104.9 FM Fun Asia Radio. कम्युनिटी की जब बात निकलती है तो हमारे शहर में इतने सारे इवेंट्स होते हैं, हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज़ इतने सारे टेम्पल्स होते हैं, और हमारा ये काम है आपके लिए वहीं सारे इवेंट्स की जानकारी लाना, वहीं सारे इवेंट्स के साथ साथ हमारे साथ संस्था की और धार्मिक समाज के भी प्रतिनिधि जुड़ते हैं हर शनिवार की दोपहर. वंस अगेन एकल फाउंडेशन के प्रतिनिधि को आपने सुना, और अगर आप उन्हें कॉल करना चाहें फॉर वन फ्री टिकट तो बिल्कुल उन्हें कॉल कर सकते हैं. तो जो भी आप उनके साथ बातें होगी, इट्स अ फ्री गिव अवेज बाय एकल फाउंडेशन फॉर देयर अपकमिंग इवेंट ऑन 28 अगस्त, विच इंक्लूड शो एंड अ डिनर. जी हाँ, आपने सही सुना, फंड रेजिंग गाला है जहाँ पर डिनर के लिए भी इट्स अ फ्री गिव अवे. एंड नंबर यू कैन कॉल इज 817-915-3907. That is 817-915-3907 for one free ticket, and the event is happening on August 28th. ऐसे बहुत सारे इवेंट्स की जानकारी और ऐसे बहुत सारी बातें आप ही के लिए हर शनिवार की दोपहर ऑन 104.9 FM Fun Asia Radio.

कुछ इंस्पिरेशनल उम्मीदों की बातें, पॉजिटिविटी ऑन दिस शो एवरी सैटरडे बिटवीन 1 एंड 2, नहीं 2 से 3 के बीच में, 1 एंड 2 रहती हूँ मैं, लेकिन ये कार्यक्रम, ये जो प्रस्तुति आप सुनते हैं, दैट इज ऑलवेज बिटवीन 2 एंड 3 PM. INT प्रस्तुत करते हैं देयर 80th इंडिपेंडेंस डे एट INT आनंद बाजार 2026 ऑन सैटरडे ऑगस्ट 15th 2 बजे से, जी हाँ, कॉमरिका सेंटर इन फ्रिस्को. तो आप जा सकते हैं, इट इज़ ऑल इंडोर्स. जी हाँ, अक्सर हम फरियाद करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि यार कितनी धूप है, कितनी धूप है. वेल, वो कंप्लेन आपको आज या 15th को नहीं रहेगी, बिकॉज इट इज़ ऑल इंडोर्स. आप जा सकते हैं वहाँ पे. इट इज़ हैपनिंग ऑन 15th August फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स, जहाँ पर आपके लिए परेड है, कल्चर परफॉर्मेंसेस है, लाइव म्यूजिक, शॉपिंग एंड ऑफकोर्स ड्रोन शो भी है, फायरवर्क्स फिनाले. ये सारी बातें happening at INT's Anand Bazaar, 15th of August. रक्षाबंधन बहुत ही नज़दीक है. जी बिल्कुल, अगर रक्षाबंधन के लिए एक बहुत ही बढ़िया मज़ेदार बात यह है कि दिस रक्षाबंधन फनेशा रेडियो एंड चौकटो कैसीनो एंड रिजॉर्ट जो है आपके लिए, जो आपकी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज है आपके भाई या बहन के साथ, यू कैन सेंड देम 1 मिनट वॉइस नोट. एंड व्हाट्सएप नंबर इज 2148377147. क्या कर सकते हैं आप? बस आपको भेजना है और उसके बदले में आपको कुछ डेली प्राइजेस मिल सकती है, कुछ डाइनिंग एक्सपीरियंसेस के साथ, एंटरटेनमेंट के और रिजॉर्ट स्टे के भी प्राइस मिल सकती है. वंस अगेन, ऑल यू हैव टू डू इज व्हाट्सएप योर सिबलिंग्स बेस्ट मेमोरी 2148377147. चलिए एक बार फिर से आपको मैं अराउंड द टाउन, हमारे शहर में होने वाले इवेंट्स की जानकारी दे दूं. 49th आनंद बाजार, एज आई सेड, हैपनिंग ऑन 15th August 2 PM ऑनवर्ड्स, कॉमरिका सेंटर इन फ्रिस्को. सूरदान 2026 म्यूजिक फॉर मिरेकल्स एंड इट इज हैपनिंग ऑगस्ट 8th एंड द वेन्यू इज इन लुइसविल ग्रैंड सेंटर ग्रैंड थिएटर. वंस अगेन, सूरदान 2026 म्यूजिक फॉर मिरेकल्स हैपनिंग ऑन ऑगस्ट 8th एट 4 PM. श्री रघुनाथ टेम्पल एंड दे आर स्टार्टिंग हिंदी क्लासेस रघुकुल विद्यापीठ एंड इट इज हैपनिंग एट श्री रघुनाथ टेम्पल. माइंडफुल हैप्पीनेस एंड वेलनेस वर्कशॉप 7th, 8th and 9th August विथ अर्चना दीदी, मेडिटेशन गुरु. 7th August ये होने जा रही है बातें भारत निवास में, भारतीय निवास में. 8th August इट इज हैपनिंग एट श्री रघुनाथ टेम्पल इन द मॉर्निंग 10 to 12 एंड इन द इवनिंग 6 to 8 PM इट इज हैपनिंग एट DFW हिंदू टेम्पल. 9th August in the morning, once again 10 to 12 at Sri Raghunath Temple. Gayatri Mahayagna by DFW Hindu Temple happening on August 9th, Sunday morning 9 a.m. till noon. Once again, that is August 9th, 9 a.m. till 12. Bhajan Sandhya by Bhavesh Khatri happening at Meridian Event Avenue 26th of August and this is happening on once again 26th of August by Vaishnav Sangh of Dallas. कथक ऑन द सिल्वर स्क्रीन एंड दे आर गिविंग अवे फ्री टिकट्स टुडे. जी हाँ, फ्री टिकट्स इफ़ यू आंसर अ सिंपल क्वेश्चन फॉर एकल एंड यू कैन कॉल देम. एंड वंस अगेन, मैं उनका नंबर आपको देना चाहूँगी. इट इज़ 8179153907. यू कैन कॉल दिस नंबर फॉर द फ्री टिकट्स. कथक ऑन द सिल्वर स्क्रीन इट इज़ बाय एकल फाउंडेशन, अ फंड रेजिंग गाला. हिंदू रिश्ते या मैट्रिमोनियल इवेंट DFW गुजराती समाज प्रस्तुत करते हैं ऑन ऑगस्ट 8th एंड इट इज स्टार्टिंग एट 11 AM ऑल द वे इन द आफ्टरनून एंड द वेन्यू इज स्प्रिंग हिल स्वीट्स बाय मैरियट. वंस अगेन, इट इज ऑगस्ट 8th मैट्रिमोनियल इवेंट रिश्ते नाते. एवरी संडे इट्स अ फ्री बाजार हैपनिंग एट DW इवेंट सेंटर इन लुइसविल. लाल लहरा हिंडोला स्टार्टिंग टुमारो, दैट इज सत्संग स्टार्टिंग एट 4 PM एट त्रिनाथम हवेली इन कॉपिल टेक्सस. कीर्तन संध्या बाय जयदीप स्वाध्याय हैपनिंग टुमारो एट BAPS टेम्पल एट 4 PM इन द इवनिंग, दैट इज इन अर्विंग BAPS टेम्पल कीर्तन संध्या विद जयदीप स्वाध्याय. रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हैपनिंग ऑन ऑगस्ट 29th एट ब्रह्मा कुमारी सेंटर इन फार्मर्स ब्रांच. And RKT, that is Radha Krishna Temple, mein aaj hai senior meet between 4 PM and 7, that is at Radha Krishna Temple. ये थे जितने बहुत सारे इवेंट्स है ना. आप सुनकर थक गए, लेकिन अभी भी और भी इवेंट्स होंगे. बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए हर शनिवार की दोपहर
मैं लाती हूँ ये सारी बातें कार्यक्रम आपके लिए। अगर आप भी हमें सुन रहे हैं किसी मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारा, चर्च, किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी सामाजिक संस्था से, और आपकी कोई भी जानकारी हम तक पहुंचाना चाहे, हमारी कम्युनिटी तक पहुंचाना चाहे, देन वेल दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म, अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी एवरी सैटरडे बिटवीन वंस अगेन 2 to 3 PM विथ मी योर होस्ट नीलम दवे। Brought to you by our CEO, Vaishali Thakkar.

0: 7 or visit astrologereeshwar.com.
1: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
2: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
1: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
2: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
1: और एंटरटेनमेंट,
2: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
1: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
2: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
3: फॉर डेकेड्स वन मैन हैज मेड द वर्ल्ड डांस। Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
4: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

spreading love and understanding with best music. 104.9 FM. Yay!

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: Now, sir, or price?
4: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
9: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
15: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
16: पैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
15: विजिट पैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
18: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
18: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में सब संभालेंगे?
18: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
15: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: कनाडा फिल्म जोगी से लिया गया ये गाना शिवाजी की फरमाइश पर सुन रहे थे हम. 47 मिनट्स पास 3, दिस इज बोली प्यार की. और इसमें सिर्फ दो ही रूल्स हैं, एक तो ये कि हम आपको रीजनल लैंग्वेजेस के गाने सुनवाते हैं एंड नो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश सॉन्ग. सेकेंड रूल ये है कि हर लैंग्वेज के सिर्फ दो ही गाने प्ले किए जाते हैं, यानी कि अगर एक लैंग्वेज के दो गाने प्ले हो गए देन वी विल नॉट बी टेकिंग एनी मोर रिक्वेस्ट इन दैट लैंग्वेज. दैट सेड, देयर इज ऑल्सो अ होल द टाइम ऑफ अप टू 10 minutes in this show, so please hold and have some patience, but rest assured I answer each and every call and your call will be answered in the order it was received. So aaiye chalte hain next caller ki taraf. Fanisha Radio, aap on air hain, aapka naam?
1: My name is Rupi.
0: Rupi?
1: Yeah, Rupi, R-U-P-P-I.
0: Rupi. Okay, boliye Rupi, kaun si language ka gana suninge?
1: Yeah, I need one Telugu song.
0: A Telugu song, all right. Yeah. और आपके तेलुगु सॉन्ग का क्या नाम है जरा आहिस्ता आहिस्ता बताइएगा.
1: From the movie OG.
0: The movie is OG, okay.
1: Yeah.
0: And what's the name of the song?
1: OG Firestorm.
0: Like, is it called They Call Him OG? That one?
1: Yeah.
0: Okay. ये English में तो नहीं है, because हमको English का गाना नहीं play करना. Telugu है इसमें.
1: It will be in Telugu.
0: ओके ठीक है, got it. बस खाली नाम इंग्लिश में है. हाँ,
1: नो जस्ट सम लाइंस इन इंग्लिश.
0: ओके, got it. ओके ओके, थैंक यू. बिकॉज अगेन लाइक आई सेड, हमारा फोकस है हमारी रीजनल लैंग्वेजेस पर, सो वी वांट टू मेक श्योर दैट वी प्ले ऑथेंटिक रीजनल लैंग्वेज सॉन्ग्स.

0: सुन रहे थे हम ये उड़िया सॉन्ग पार्थ की रिक्वेस्ट पर 11 मिनट्स पास्ट 4 यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 एफएम. मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त तमरीन हसनात प्लेइंग रीजनल सॉन्ग्स टिल 5 पीएम. स्टूडियो का नंबर आपके पास होना चाहिए 9722355555 होल टाइम ऑन दिस सेगमेंट इज एनीवेयर फ्रॉम 5 टू 10 मिनट्स. फनीशा रेडियो आप ऑन एयर है आपका नाम. हेलो फनीशा रेडियो जी आप ऑन एयर है आपका नाम.
1: मेरा नाम अनुज वर्मा है
0: जी. बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे.
1: मैम हरियाणवी का है रिसेंटली आया है. इट्स नेम इज सात बाय बंजारे.
0: सात क्या आई एम सॉरी क्या बोले आप. सात व्हाट.
1: बरसात.
0: ओ बरसात. हरियाणवी सॉन्ग का नाम क्या बताए.
1: बरसात बाय बंजारे.
0: ओ अच्छा सात बरसात बाय बंजारे. ओके ठीक है आई गॉट इट. और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें.
1: मैं केलर से कॉल कर रहा हूँ.
0: ओके ठीक है नो प्रॉब्लम. आई विल प्ले योर सॉन्ग फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. लेट्स सी आई एम थिंकिंग दिस इज द राइट सॉन्ग. हियर इट इज.

0: I like this song. Thank you so much for requesting it. Very sweet indeed. And I guess you have to feel the vibe. You have to feel the lyrics to kind of understand the pain in the singer's voice and the poet's poetry. All right, chalte hain next caller ki taraf. Let's find out unhe kaun si bhasha ka sunna hai gana. Phanisha Radio, aap on air hai, aapka naam? Hello?
1: Amrin ji, kya baat hai nu?
0: I'm sorry, कौन बात करे?
1: मैं राजीव बोल रहा हूँ.
0: जी राजीव, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया.
0: ओके, बताइए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे आप?
1: मुझे मैथिली का गाना सुनना है.
0: मैथिली, ओके.
1: आप सर्च करिएगा हरी हरन मैथिली सॉन्ग, एक ही गाना आएगा वो.
0: ओके, हरी हरन ने गाया है. ओके, वेल ही इज वन ऑफ माय फेवरेट, सो जो भी गाना होगा आई एम श्योर आई एम गोना लव इट. ओके,
1: बहुत बढ़िया होगा.
0: ओके, आई विल प्ले दैट फॉर यू. और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें राजीव?
1: जी मैं अभी मकिनी में हूँ.
0: मकिनी, ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल. ये रहा आपका गाना.

0: हरी हरन की मधुर आवाज में सुन रहे थे हम ये मैथिली सॉन्ग. यू नो आई हैड द ऑनर ऑफ इंटरव्यूइंग हरी हरन साहब इन पर्सन एंड द फैक्ट कि ये मैथिली गाना गा रहे हैं, ही इज एक्चुअली साउथ इंडियन, तो ये बहुत अलग अलग भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं. तो मैं उनसे पूछ रही थी कि देखिए आपकी गायकी की खासियत ये है कि आप जो कुछ भी गाते हैं बहुत दिल से गाते हैं, बहुत पैशन है आपकी आवाज़ में, बहुत सोज है, बहुत दर्द है. तो अपनी लैंग्वेज या जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है उसमें तो हम दर्द पैदा कर सकते हैं, सोच पैदा कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू पुट योरसेल्फ इन दैट स्टेट ऑफ माइंड एंड सिंग दैट सॉन्ग, राइट, कि जो उस गाने की फील है या शायरी जो जैसी भी है. तो आप ये दूसरी लैंग्वेजेस के गाने कैसे गा पाते हैं इतनी खूबसूरती से? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट व्हेन ही सिंग्स सॉन्ग स्पेशली दोज इन अ लैंग्वेज दैट ही डजंट अंडरस्टैंड, ही मेक्स श्योर दैट ही ट्रांसलेट्स देम आउट फर्स्ट एंड understands each and every word, उसके पीछे क्या story है, क्या feeling है, और फिर वो उसे समझ कर गाते हैं, और तभी he does such a great job of singing songs in so many different languages. I mean, I've lost count. I know मैंने interview तो उनका किया था लेकिन मेरी याददाश्त बहुत ख़राब है तो मैं भूल गई हूँ. But he was here in town in Dallas performing when I got a chance to meet him. It is now 18 minutes past 4. You're listening to Boli Pyar Ki. I'm your host, Amreen Hasnat. बहुत प्यार से आपके लिए segment लेकर आती हूँ. I hope कि उतने ही प्यार से आप भी इसे सुनते हैं. बस I know आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी कॉल थ्रू करने के लिए एंड ऑल्सो होल्ड करने के लिए, बिकॉज द होल टाइम ऑन दिस शो इज 5 to 10 मिनट्स मिनिमम, सो यू गॉट अ बेयर दैट इन माइंड. सो अगर वैसा वाला पेशेंस नहीं है तो आई एम सो सॉरी. ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. लेट्स फाइंड आउट कौन सी लैंग्वेज का होगा गाना. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर. हेलो, देयर्स टू मच एक्सटर्नल नॉइज, कैन यू प्लीज होल्ड द फोन इन योर हैंड. Okay. Hello? Hello? Yes.
1: Hello, ma'am. जी जी. मेरा नाम वंदना है.
0: जी वंदना जी, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: मैं उड़िया गाना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ.
0: ऑलराइट, दिस विल बी आवर सेकंड उड़िया सॉन्ग फॉर टुडे. क्या नाम है आपके गाने का?
1: मेरा गाने का नाम है रूपा सगड़ी रे सुना कनिया.
0: रूपा क्या?
1: सगड़ी, सगड़ी एस ए जी डी आई.
0: रूपा सगेड़े, ओके ठीक है, मुझे आ गया. मेरी तो आपको पता है कितनी अच्छी उड़िया मैं बोलती हूँ, सो यू नो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं. हियर इज योर सॉन्ग, एंजॉय.

0: सुना कहानियां, देखा फिर मेरी उड़िया कितनी अच्छी हो गई है। ये मैं करती रहूंगी ना ये सेगमेंट, सुबह बिल्कुल फ्लुएंट हो जाऊंगी। 23 मिनट्स पास्ट 4, यू आर लिसनिंग टू बोली प्यार की। वंस अगेन रिमाइंडिंग यू दैट द होल टाइम ऑन दिस शो फॉर यू टू गेट योर सॉन्ग प्लेड इज मिनिमम ऑफ 5 to 10 minutes, so you gotta be patient. And this part of Boli Pyar Ki is brought to you by Page 3 Eatery. And if you like something modern, something hip, but khane ka taste acha hona chahiye, you'll get it at Page 3 Eatery. They've got that perfect ambiance for brunch, lunch or dinner. So jiske saath bhi jana chahte hain, mujhe bhi le ja sakte hain. Waise family, friends, whoever. Waise main to hoon na aapki friend, aapki host, aapki dost. Aise nahi kabhi dost ko bhi saath le jaye Page 3 Eatery. Now they're located very close to the studio actually. Hub 121. You can get all the details by visiting page3eatery.com. All right, chalte hain next caller ki taraf. Fanisha Radio, aap on air hai, aapka naam? Hello? Fanisha Radio, aap on air hai, please speak up. I know you've been on hold for a while. Hello, hello, hello. Unne socha ki itni der mein jaake chai bana lete hain. और चाय पी भी लेते हैं, खाना भी पका लेते हैं, या किसी और के घर से हो के आ जाते हैं इतना देर, इतनी देर से होल्ड पे हैं। हेलो, आर यू स्टिल देयर और डिड यू मे बी दे डिसकनेक्टेड और मैं ऐसे ही कॉल पकड़ के बैठी हूँ। हेलो, ओके, आई फील रियली बैड। मैं इसलिए इतना टाइम लेती हूँ डिसकनेक्ट करने में बिकॉज आई नो आई हैव दिस लिटिल टाइमर हियर दैट टेल्स मी हाउ लॉन्ग देव बीन होल्डिंग, सो मुझे बड़ा बुरा लगता है। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: कैन यू हियर मी?
0: आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। व्हाट्स योर नेम?
1: ओके, I'm Ruma from Fort Worth, okay. And I like to hear a Bengali song by Hemant Mukherjee.
0: एक सेकंड, आपने तो लगता है जितनी देर होल्ड किया ना उतनी देर आपने प्रिपेयर किया हुआ था। मैं ये बोलूंगी ताकि उसको कुछ पूछना ना पड़े। ओके, आप बताइए आपके गाने का फिर से बांग्ला सॉन्ग का क्या नाम है?
1: हेमंत मुखर्जी आज दूजोनार दूटी पदों को दूटी दिखे गैसे बेके।
0: आज के बाद फिर से शुरू करें। आज क्या?
1: आज बुझो ना,
0: आज बुझो ना,
1: हाँ, दूटी पथ
0: बुझो ना। ओके, दूटी, ओके, मेरी ओके, आई थिंक ओ आज दूजान और दूटी पथ। এই তো এখন আমি পেয়েছি গানটা আপনার, অসুবিধা নেই, এখনই প্লে করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর কল। কাহা সে
1: আপনার?
0: Oh, that's so sweet.
1: This is my mom's favorite song, so that's why I'm just trying to hear again.
0: That's so nice. Here you go. Enjoy.

0: All right, we're going to move on to the next song, but I want to tell you guys ki ab hum Bangla, Haryanvi aur Udiya gaano ki requests nahi le rahe because we've already played two songs. Phanisha Radio, aap on air hai, aapka naam? Hello, Phanisha Radio, aap on air hai? Yeah, shayad nahi hai. Okay, we'll move on to the next caller. Phanisha Radio, aap on air hai, aapka naam? Hello?
1: Hello?
0: Ji, aap on air hai, aapka naam?
1: रूपा
0: जी. रूपा बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: कनाडा का सॉन्ग.
0: कनाडा. नाउ दैट इट्स इजंट इट फनी वी हैव टू बैक टू बैक रूपास कॉलिंग.
1: ओह रियली?
0: या ये बांग्ला सॉन्ग भी रूपा ने रिक्वेस्ट किया था. खैर कोई बात नहीं. अच्छा अब आप बताइए आपके कनाडा सॉन्ग का क्या नाम है?
1: इट्स कॉल्ड बॉम्बे हेलुतैते.
0: बॉम्बे क्या?
1: हेलुतैते. एच ई एल यू.
0: एच यू H-E-L-U. Okay, got it. I think I found it and I will play it for you. Ab chunke we're going to be going into commercial break, so main abhi shuru karungi to aap ek minute bhi nahi sun payengi. Acha ye to bataiye kahan se call kar rahi hai Rupa?
1: Frisco.
0: Frisco se. Kya aapne aaj hame pehli baar call ki hai?
1: Nahi, isse pehle bhi call kiye
0: the. Isse pehle bhi kiye thi. Okay, chalo good. Maine play kiya tha aapka gana pichli baar bhi.
1: Yes, yes.
0: Achhi na hai.
1: Thank you.
0: No, just kidding. All right, thank you so much. All right, guys, I hope you're enjoying. As I mentioned earlier, Bangla, Haryanvi, Uriya ka kota ho gaya pura. Kyunki unke do do gaane ho chuke hain. But we did play Marathi, Kannada, Telugu, Maithili songs as well. Aur agar aapki language ka gaana abhi tak play nahi hua, to isme kasoor सरासर आपका है. आई अपोलोजाइज. मैं क्या करूँ, मुझे आपको ब्लेम करना पड़ रहा है बिकॉज आपने कॉल ही नहीं की. आपने कॉल ही नहीं की तो इसलिए आपका गाना. अगर आप सिंधी और आपने सिंधी गाना नहीं सुना तो किसको ब्लेम करेंगे? खुद को. खुद को ब्लेम करें क्योंकि आप सिंधी हैं. आपको चाहिए था कॉल करके गाना रिक्वेस्ट करते. अगर पंजाबी गाना नहीं सुना, दैट इज ऑल्सो योर फॉल्ट क्योंकि आप पंजाबी हैं. आपको चाहिए था पंजाबी गाने की रिक्वेस्ट करते. मुझे भी वो इतने अच्छे लगते हैं. ऑलराइट गाइस, एंड इफ यू डोंट हैव द नंबर, दैट्स माय फॉल्ट. 972-235-5555. When we come back, we'll be playing our second Kannada.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
5: अरे सारे तो सेम है.
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
5: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: अरे वो केक आया क्या?
5: डीजे कौन हैंडल करेगा?
6: डिकॉर्ड वाले को कॉल किया.
5: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया.
4: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया.
5: ऑसम इवेंट्स?
4: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड द टीम विल हैंडल एवरीथिंग.
5: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म.
4: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ.
3: कॉल नाउ एट 214-725-7466. 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
7: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
6: भूख लगी
8: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
9: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, it's what your mood is actually craving.
3: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to page 3, hub 121 McKinney.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: एक्सपीरियंस पीस, म्यूजिक एंड मेडिटेशन विद अर्चना दीदी एट अ फ्री 3-डे रिट्रीट इन DFW। जॉइन अस ऑन August 7th एट भारतीय निवास इन रिचर्डसन, August 8th एंड 9th मॉर्निंग एट श्री रघुनाथ टेम्पल इन प्लेनो एंड August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
3: Proudly supported by Roma Pithadia, Shri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
14: Register free now at meditation.funasia.net.

0: बॉम्बे हेलो थाइटे, सुन रहे थे आप ये कनाडा सॉन्ग एंड दिस हैपेंस टू बी आवर सेकंड कनाडा सॉन्ग टुडे. सो फार वी हैड मराठी, कनाडा, तेलुगु, बांग्ला, हरियाणवी, उड़िया एंड मैथिली सॉन्ग्स, जिसमें से उड़िया, हरियाणवी, बांग्ला और कनाडा के दो दो गाने हो चुके हैं. यानी कि अब इन लैंग्वेजेस, इन भाषाओं में हम और रिक्वेस्ट नहीं ले पाएंगे. स्टूडियो का नंबर होना चाहिए आपके पास, 5 से 10 मिनट का होल्ड टाइम है, 9722355555. विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून. दिस इज अमरीन हसनात एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय टेक्सस Primary Care. For 13 years, they have proudly cared for our community or a big brand new location as well as a brand new name, Lunoxy Medical. Founded by Dr. Mandeep Acharya, they bring primary care, urgent care, in-house lab testing, x-ray, CT scans, cardiac diagnostics and Himalayan Med Spa service all under this one clinic, Lunoxy Medical. And the best part, they're open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. So you can walk in anytime. There's no appointment necessary. All right, chalte hain next caller ki taraf. Thank you for holding. Aap on air hai, aapka naam?
1: Rajveer.
0: Ji, Rajveer?
1: Uh-huh.
0: Ji, bataiye kaun si language ka gana request karenge?
1: Punjabi.
0: All right, aur aapke gaane ka kya naam hai?
1: सोनी कुड़ी बाय अमरिंदर गिल.
0: सोनी कुड़ी और सिंगर का नाम है अमृत
1: अमरिंदर गिल.
0: अरमिंदर गिल. ओके.
1: अमरिंदर.
0: अमरिंदर. ओके. अमरिंदर गिल. Hey, that's similar to my name. Mera naam hai Amreen. So it was like a little bit like that. Okay, I will play that for you, Sony Kuri. Thank you. Aur aap kahan se call kar rahe hain hame?
1: Plano.
0: Plano se. Thank you. Here's your song.
1: Thank you.

0: ਜੜੀ ਹੋ ਵਾਣੀ ਕਾਨਾ ਜੜੀ ਹੋਏ ਤੋ ਆਲ ਕਾਨਾ ਜੜੀ ਹੋਏ ਤੋ
1: You know, गुजराती सिंगर्स तो बहुत से हैं लेकिन आदित्य गारवी का स्टाइल ही कुछ और है. आई जस्ट लव इट जिस तरह वो मस्त मगन होकर गाते हैं ना. इट इज सच अ प्लेजर टू हियर हिम सिंग. इट्स 50 मिनट्स पास्ट 4 एंड इफ यू हैवंट हर्ड PMJ Jules इज नाउ इन फ्रिस्को. दैट्स राइट, दे बीन ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्यूरी excellence throughout the world with timeless Indian craftsmanship and now they're right here on Main Street in Frisco and jaise ki aap jante hain that they are proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Ghatamaneni. So this is a name that is trusted by generations. All right, phir se recap karti chalu. No more Kannada, Bangla, Haryanvi, Uriya or Punjabi song request kyunki we've already met our quota. Let's see who's our next caller. Fanisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
2: Can you hear me?
1: Ji, I can. Kya naam hai aapka?
2: My name is Apikshit. How are you?
1: I am good, Apikshit. Bataiye, kaun si language ka gana request karenge?
2: I would request a song in Marathi.
1: Marathi?
2: A song sung by Kishore Kumar.
1: Okay.
2: Ashwini Yena.
1: Ashwini? Okay.
2: Yena.
1: Okay, let's see if I can find that. Like purana gana hai, huh? कोई मूवी का फनी सा. ओके ठीक है. ओके, इज इट तूजी माजी जोड़ी जमली, दैट वन?
2: या यू आर राइट.
1: ओके ठीक है, आई विल प्ले दैट फॉर यू. एंड आप कहां से कॉल कर रहे हैं हमें?
2: डेलस टेक्सास.
1: ओके, थैंक यू फॉर योर कॉल. हियर इज योर सॉन्ग.

0: यूजुअली हमारे सेगमेंट में हम ऑलमोस्ट यू नो 13-14 अलग लैंग्वेजेस के गाने सुनवाते हैं, लेकिन आज वी एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ डबल्स, व्हिच इज व्हाई वी हैव ओनली प्लेड 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस. लेट्स सी अगला गाना कौन सी भाषा में होगा. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम.
1: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर है, आपका नाम.
1: नेहा, एंड मैं भोजपुरी सॉन्ग, आई डोंट नो हुआ है कि नहीं.
0: हुआ नहीं हुआ, थैंक यू सो मच.
1: ओके,
0: बोलिए कौन सा भोजपुरी सॉन्ग सुनना चाहती हैं आप.
1: हो हमारे टाइम पे, हमारे सीनियर्स रैगिंग के टाइम से आते थे, एंड दैट इज लिपस्टिक सॉन्ग. हैव यू?
0: ओह, लिपस्टिक. ओके, वो तो वो उनका जो स्टाइल होता है ना बोलने का, लिपस्टिक, दैट इज माय फेवरेट पार्ट, राइट. ओके, तो वो लेकिन रैगिंग के टाइम पे उसका इस गाने से लेकिन क्या ताल्लुक था?
1: गाना पड़ता था ये सॉन्ग.
0: क्या होता था वो? गाना पड़ता था. ओ माय गॉड. ओके, नाउ आई गेट इट.
1: बॉयज के साथ बहुत होता था कि एक गाता था, एक डांस करता था.
0: ओह नो, माय गॉड, आई कैन इमेजिन, दैट इज रैगिंग. थैंक यू सो मच. तो आइए फिर अब की, लेट्स गो बैक इन टाइम.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas' newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG FinTax, your growth, our strategy.
13: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
14: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
16: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
17: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देयर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%। सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 96641.
18: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
19: For decades,

0: get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
1: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
2: Welcome back to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. I'm your host, Amreen Hasnat. I'll be with you till 6 p.m. It is 5 minutes past 5 on this 1st of August, 2026. A new month, a new beginning. I hope that this new month brings you a lot of happiness and joy. And if you're struggling through some difficult times in your life, may God take it all away. दिल से प्रोग्राम में आज जो सेगमेंट हम पेश कर रहे हैं उसका नाम है मिक्स रीमिक्स, यानी कि रीमिक्सेस प्ले करेंगे हम आपके लिए, ओरिजिनल गाने भी और फिर उनका रीमेक, एंड देन आप खुद जज कीजिएगा कि आपको कौन सा वर्जन ज्यादा अच्छा लगता है. दिस मिक्स रीमिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय तारा कमर्शियल एनर्जी, स्पेशली अनाउंसिंग फॉर आवर बिजनेस ओनर्स. इफ यू आर लुकिंग फॉर ए कंपनी दैट यू कैन ट्रस्ट एंड हैज कंपेटिटिव रेट्स एंड रिलायबल सर्विस, well then you can get your customized energy plan through Tara Energy. So visit them today, taraenergy.com, or call 844-428-2808. Yeh hai hamare aaj ke mix remix segment ka pehla gana.

गुलाबी आंखें, खूबसूरत गाना, दोनों वर्जन ही बहुत अच्छे हैं। आई एम अ बिग सनम फैन, सो इसलिए मुझे रफ़ी साहब का गाया हुआ वर्जन भी पसंद आता है और ये सनम वाला भी। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस रीमिक्स मसाला, जिसमें हम आपको ओरिजिनल और रीमिक्स दोनों गाने बैक टू बैक सुनवा रहे हैं, ताकि आप खुद ही डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा पसंद है। 94 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज़ द करंट टेम्परेचर, टुडेज़ हाई वॉज 96, सो ऑब्वियसली अब गर्मी का जोर टूट रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा, स्पेशली दोज ऑफ यू हु लाइक टू वॉक आउटसाइड, यू नो इट्स गोना गेट अ लिटिल बिट बेटर। आई मीन ठंड नहीं है पर थोड़ी गर्मी कम है।

आगे आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

0: All right, that was Dum Maro Dum. Now, this song was from the 1971 film Hare Rama Hare Krishna. Aur iska remix play karenge break ke baad.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 2148377147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
4: तारा वो तारा हर तारा.
5: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
6: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
7: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
6: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? Keyperson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
8: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
9: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
8: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
9: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
8: और एंटरटेनमेंट,
9: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
8: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
9: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
11: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
10: सच में सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
6: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

फिर देख रहा है, आज आंख सेक रहा है, कल हाथ सेकेगा, आज ढील छोड़ रहा है, कल खुद ही रोकेगा, आज मेरे लिए चेयर खींच रहा है, कल मेरी स्कर्ट खींचेगा, खींचेगा कि नहीं?

फिर क्यों मैं तू कर रहे टू टू आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज दैट शी सेज दैट वाज दीपिका पादुकोण डांसिंग टू दम मारो दम एंड दैट वाज द नेम ऑफ द मूवी एंड दिस ऑफ कोर्स इज अ रीमेक वर्जन बिकॉज ओरिजिनल गाना आशा भोसले ने गाया था और जीनत अमान पर पिक्चराइज किया गया था. यू आर लिसनिंग टू रीमिक्स मसाला ऑन 104.9 एफएम. मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त अमरीन हसनात. मार्क योर कैलेंडर्स, सेलिब्रेट इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे एट IANT's आनंद बाजार ऑन सैटरडे ऑगस्ट 15 फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एट द कोमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स एन इंडोर इवेंट. इतनी गर्मी में बाहर हम जा भी नहीं सकते एंड इट्स फ्री for everyone. So come enjoy authentic Indian food, grand parade, cultural performances, live music, shopping. So please kisi ko piche ghar chhod ke mat aiyega. Family, friends, sabhi ko lekar aiye and enjoy kijiye North Texas ka sabse bada Indian Independence Day Mela. IANT Anand Bazaar.

कॉन्ग्रेचुलेशन लवजीत, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये गाना सुनील शेट्टी और रवीना टंडन पर पिक्चराइज किया गया था फॉर द फिल्म रक्षक, एंड यू जस्ट वन योर सेल्फ अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन फॉर द बेस्ट देसी पिज्जास इन टाउन।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
8: Call 857-891-8942 today.
9: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
10: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं.
9: व्हाट?
11: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन. पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड. ऑफर वैलिड टिल August 3rd. विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स.
12: ब्रेकिंग न्यूज. होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
13: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
14: Kabhi chatpata sa twist, kabhi tikha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
13: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
14: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, हर बाय सुपर हिट.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
19: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
19: Kya matlab?
2: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
19: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
19: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, fir pooja ka saman, gifts bhi kharide.
8: खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
8: कहाँ?
20: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी, एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
21: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
22: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of

तेरा इंतजार है. थैंक यू अमरीन फॉर डूइंग दैट वंडरफुल शो. वेलकम वेलकम वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट आरजे सौमिल और जुड़ चुके हो आप जीले ज़रा का सेगमेंट. आज थोड़ा लेट हो गया मुझे आने में, तो जीले ज़रा का सेगमेंट हम शुरू करेंगे थोड़ी देर के बाद. बट सिंस जी हाँ, तेरा इंतज़ार है. और कभी कभी ऐसा ही होता है कि आप किसी के साथ होते हो अगर, और वो इमोशनली आपसे दूर हो, वो इंतज़ार अलग ही होता है. और दूसरा इंतज़ार होता है कि आप दोनों के बीच में सात समंदर है और फिर आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, वो इंतज़ार अलग होता है. द प्रीवियस वन, जब आप एक साथ होते हो फिर भी इंतज़ार रहता है, वो इंतज़ार माय गॉड बहुत ही गहरा होता है, बहुत ही हैवी होता है. चलिए ज़्यादा हैवी बात नहीं करता हूँ मैं, कीपिंग द सेम मूड गोइंग फॉर अ फ्यू मोर सॉन्ग्स. लेट मी ब्रिंग यू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग टेकन फ्रॉम द मूवी गजनी.

जी हाँ, वही लम्हों की यादों को लेके आया हूँ मैं आपके पास. इनफैक्ट आज शाम जीले ज़रा इज़ गोना बी लिटिल स्पेशल, सो वील स्टार्ट जीले ज़रा लिटिल लेटर. बट अगर आपको कुछ सुनना हो, कुछ सुनाना हो, तो मैं लाइंस ओपन कर रहा हूँ. इस गाने के बाद आएगी ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आई विल ओपन अप द लाइंस. एंड बस इट्स लाइक ऑलवेज, इट्स सैटरडे नाइट एंड यू ट्यून इन टू जीले ज़रा. सो व्हेन यू रिक्वेस्ट द सॉन्ग, मेक श्योर द सॉन्ग हैज़ द बीट that can move our feet. As long as that request is there, it doesn't matter what language it is, as long as it's not too racy song, it is a fair game. Chaliye leke chalta hu aapko Safi ki request pe is gaane ki aur, taken from the movie Jawan.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jaye aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB. Here everything is better.
4: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game. Ajee, sunte ho?
5: Ajee, nahi. AG sunte hain.
6: The OG of tax planning, AG Fintax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday, 9:45 a.m. only on Funasia Radio.
7: Main shaadi karungi, to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
10: Wait, इतना सब और price?
9: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional हो या fusion, अब हर outfit बोलेगा।
11: मैं ही तो
12: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज, होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज, लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
13: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
14: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
15: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
16: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
17: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
18: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

वेलकम वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हाँ, पास आ जीले ज़रा, दैट्स द रीज़न वाई हमने शो का नाम रखा है जीले ज़रा, क्योंकि यार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धुएं धोखे थके आपको और हमको मिल जाती है, और इसी में आपकी और हमारी ज़िंदगी कट भी जाती है। पर काटनी किसे है ज़िंदगी, अगर जीनी है ज़िंदगी तो सही स्टेशन पे, सही टाइम पे ट्यून इन हुए हो आप, इसीलिए हमने शो का नाम रखा है जीले ज़रा से। क्यों ना आप और हम इस खूबसूरत सी ज़िंदगी से दो पल चुरा ले, क्यों ना आप और हम शाम को और थोड़ा रंगीन बना ले, क्यों ना आप और हम जी ले जरा।

एब्सोल्युटली क्यों ना इस शो की शुरुआत करते हैं हम. इनफैक्ट बहुत सारी रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई है ऑलरेडी. और प्रीति योर सॉन्ग इज कमिंग अप, मेरियम योर सॉन्ग इज लाइंड अप, सुनीता योर सॉन्ग इज लाइंड अप. अगर आपको आज शाम कुछ सुनना हो, कुछ सुनाना हो या फिर किसी के साथ कुछ शेयर करना हो तो जरूर कॉल कीजिए. स्टूडियो का नंबर 9720235555, क्योंकि

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी।
1: जी हाँ, बहस चलाने की कोई जरूरत नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपको जरूरी जानकारी देते चलता हूँ मैं आपको। आपको याद रखना है टेक्सास ट्रस्ट क्रेडिट यूनियन थिएटर जो ग्रैंड प्रेरी में है। ये क्यों बता रहे हो सोमिल? हम ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रभुदेवा लाइव इज हैपनिंग टुनाइट। मतंगी एंटरटेनमेंट ग्रुप इज प्राउडली ब्रिंगिंग इंडियाज माइकल जैक्सन। जी हाँ, प्रभुदेवा इज इन टाउन एंड परफॉर्मिंग लाइव इन DFW। ज्वाइनिंग हिम आर लॉरेन गॉटलिब, सोनल अलेक्जेंडर, हरिनी, नताशा एंड सानवे। Whole bunch of people there to entertain you. And abhi to party shuru hui hai. And the ultimate Pan India dance concert is happening, going down tonight, Saturday, August 1st. Kahan ho rahi hai party? फिर तुम पूछोगे मुझसे कि यार where's the party tonight? Well, the party is right here on 104.9 FM and the live party with Prabhudeva is at Texas Trust Credit Union Theatre in Grand Prix. अगर आपने टिकट्स नहीं ली तो नंबर देता हूँ मैं आपको 248-233-3828 and media partner of course is your favorite radio station Phoenicia Network.
2: Nacho all night. Do you feel all right? Wanna nacho all night?

जी हाँ, और द पार्टी टुनाइट, वेल द पार्टी इज राइट हियर, एंड मैंने बताया आपको पार्टी कहाँ चल रही है, प्रभुदेवा लाइव। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉल कीजिए 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। सुनीता, दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग दिस सॉन्ग। आदत, कमिंग योर वे, आतिफ असलम, यू एब्सोल्युटली स्लेड, एंड हियर कम्स आदत, दिस टाइम अ रिमिक्स्ड वर्जन।

जी हाँ, परदेश या टेकन फ्रॉम परम सुंदरी, ऑफ कोर्स आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक आ रहा है और ब्रेक के उस पार मैं आपको मिलूंगा और जिंदगी आ रहा हूँ मैं, बस यू गया यू आया। कुछ जरूरी अनाउंसमेंट्स है आ रहे हैं ब्रेक में और उसके पार, उसके ब्रेक के उस पार मैं मिलूंगा आपको विद आतिफ असलम वंस अगेन।